101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, ईस्वी सन 2026 दिनांक 14 अगस्त। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
3: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

0: इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 280। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार हैं शुभा मुद्गल, भाग 14। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 पर।

सुबह 7 बजे का समय है, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 7:30 पर हम है राही प्यार के कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 41। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता शम्मी कपूर पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा, पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, और 11 बजे का समय है रंग तरंग कार्यक्रम का। बारह 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा, और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम होगा, और 3 बजे का समय है हेलो सहेली कार्यक्रम का। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, कहानी है अब गम नहीं, लेखिका अलका अग्रवाल सिगतिया, और प्रस्तुति है राघवेंद्र सिंह नेगी की। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत, और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन, और शाम 6:45 का समय संगीत सरिता कार्यक्रम का। शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। प्रसारण समय याद रखिए शाम 7 बजे, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम होगा, इसमें सुनिए झलकी संदेश से, लेखिका है निर्मला अग्रवाल और निर्देशक कमल दत्त। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा, रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा अभिनेता

तथा शम्मी कपूर पर और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और 11 बजे रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 280 सुंदरकांड।

लंका में पवनसुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? तुम जैसे चोर उचक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कल आपने हमें बहुत ही एक बढ़िया सी मनभावन कजरी सुनाई, लेकिन आज आप क्या सुनाने जा रही हैं?
1: एक चीज कल मैं कजरी के बारे में जिक्र करना भूल गई कि कोई भी लोक संगीत का कोई गीत प्रकार हो, जैसे होली हो या कजरी हो, तो वो ऋतु संबंधी साहित्य तो उसमें मिलता ही है, लेकिन ऐसी भी चीजें मिलती हैं, ऐसी भी कजरी या होली मिलती है कि जिसमें सामाजिक कोई संदेश दिया जाए
0: जी।
1: या राष्ट्रीय भावना की भी कजरियां मिलती हैं।
0: मसलन
1: देखिए, एक एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, वो आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ मैं। जीरे दादा देखिए, राष्ट्रीय भावना की कजरी कैसी बढ़िया बैठती है उसी धुन में।
2: चरखा का तो मानो गांधी जी की बतिया, बिपतिया कटी जय है ननदी।
1: वही ननदी जो पंक्ति के अंत में आता है कजरी में, वही लगाया है, लेकिन इस बार गांधी जी और चरखा काटने की बात इसी इन पंक्तियों में कही गई है।
0: और ये जो विपत्ति कट जाने की बात है, वो तो एक सांसारिक बात तो है ही, अपनी घर गृहस्थी की बात तो विपत्ति कट जाएगी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय विपदा थी वो भी कट जाने की बात इसमें कही गई है। शुभा जी, कल की कजरी में आपने एक

0: गीत में बड़े सुंदर शब्द की डाल डाल पर झूले, तो डारी डारी झूले ऐसी कुछ बात थी
1: जी।
0: तो वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में झूले भी तो गाए जाते हैं।
1: बिल्कुल, झूले गाए जाते हैं और तरह तरह के झूले गाए जाते हैं। कुछ तो लोक संगीत से भी मिलते हैं, कुछ झूले के ऐसे वर्णन, झूला या हिंडोरना ऐसे भी पद मिलते हैं जो मंदिरों में गाए जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हिंडोले में बैठते हैं, झोंटा लगाते हैं, राधा रानी को झुलाते हैं, और कई बार झोंटा उसी के बहाने से उनके समीप आ जाते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बहुत जो लीला है, जो हिंडोरा लीला या जो झूले हैं, वो बहुत मिलते हैं
0: जी। मतलब मंदिरों से भी है और लोक गायक भी इसे गाते हैं, वो लोक शैली की है रचनाएं
1: जी।
0: तो आज हम भी तो झूलना चाहेंगे।
1: तो एक मंदिर का, वैष्णव मंदिर का एक पद लेते हैं
0: जी,
1: हिंडोरे का पद। और कृष्ण मंदिरों में जो संगीत सेवा की परंपरा है, उसका शास्त्रीय संगीत से अटूट संबंध है, और समाज गायन या जो हवेली संगीत है उसमें तो रागों में निबद्ध पद सुनाए जाते थे ठाकुर जी को, और पखावज बजती थी साथ में, सारंगी बजती थी साथ में, यदि उत्सव हो तो झांझ इत्यादि भी बजता था। लेकिन बहुत ही नियमबद्ध ये संगीत है। उसका एक पद जो एक संत कवि का है, रसिकदास जी कृत एक पद है झूले का, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। और इसको मैंने मारू बिहाग पर आधारित किया है
0: जी।
1: पूरा मारू बिहाग तो नहीं है, लेकिन एक छटा मिलती है उसकी। और इसकी विशेषता ये भी है कि जो पंक्तियां हैं वो पहले रूपक ताल में गाई जाती हैं, अगली कुछ पंक्तियां हैं जो दादरे में गाई जाती हैं,
0: अच्छा,
1: और फिर पंक्तियां आगे चल के कहरवे में भी गाई जाती हैं, और फिर वापस जो है वो रूपक में आ जाती हैं। तो ये आपको सुनाना चाहूंगी।
0: तो ये जो ताल का जो परिवर्तन होगा
1: जी,
0: इसके बारे में तो हम थोड़ा सा अनीश जी से समझ रहे।
1: बिल्कुल समझिए।
2: इस झूले में तीन तालों का प्रयोग हुआ है, पहले सात मात्रे का रूपक, उसके बाद छह मात्रे का खेमटा, और उसके बाद आठ मात्रे का कहरवा। रूपक तिन तिन ना ई।

0: शुभा जी, ये झूला तो वाकई सुनते हुए ऐसा ही लगा कि हम खुद झूल रहे हैं। आज रुकते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार। संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला।

0: ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्र...

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जागृति फिल्म का गाना, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में प्रदीप का लिखा हुआ गाना, हेमंत कुमार का संगीत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं रेल का डिब्बा, ये फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है गुलाम मोहम्मद का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में प्रदीप का लिखा हुआ गाना, सी रामचंद्र का संगीत, फिल्म का नाम है तलाक।
5: चक्कर अरे खा गए चक्कर।

101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 होने को है। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुर संगम और प्रणाम अयोध्या प्रसारित होगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज की बात। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे कलम आज उनकी जय बोल में वीरांगना प्रीतिलता वाडेकर के बारे में। इसके अलावा सुबह 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और सुबह 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। फोन नंबर होगा 7376 80 40 90। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसके बाद फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। साथ ही 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतांजलि और बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा सावन की फुहार में बच्चों की देखभाल और बच्चों को बताएं सावन की महिमा। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे अवधि कविता पाठ कवित्री अर्चना द्विवेदी के द्वारा। विषय होगा शिक्षा से स्वावलंबन, सावन और सखिया तथा अयोध्या में सावन झूला मेला। शाम 5:00 से प्रसारित किया जाएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सावधानियां। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी बरगद का पेड़ और अधूरा सपना। कहानीकार होंगी मुस्कान यादव। इसके अलावा स्थान में आज जानेंगे वेलिंगटन न्यूजीलैंड के बारे में। साथ ही जानकारी लेंगे आप शब्दावली में। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 से और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने। इसके अलावा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। और शाम 6:45 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय होगा पर्यावरण को सहेजे वृक्ष लगाएं। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे एक प्रगतिशील कृषक श्री राकेश कुमार वर्मा की भेंटवार्ता। विषय होगा सब्जियों की खेती और इस विषय पर आपसे बातचीत की है मंजू मौर्या ने। शाम 7:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। 8:15 पर कार्यक्रम होगा गीत गुंजन और रात्रि

9:15 पर आप सुनेंगे महफिले गजल। इसके बाद रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे अपने निर्धारित समय पर। तो श्रोता, ये तो थी हमारे अयोध्या केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 7:18 हुए। अब आइए कुछ ही पलों में सुनेंगे 7:20 पर गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं और बिठोर

0: कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
1: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभियान के तहत कल कानपुर देहात जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की।
2: कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। अयोध्या में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बस्ती जिले में वहां की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भदोही जिले में भी राजेंद्र बर्नवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हर घर तिरंगा निकाली गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: बाराबंकी में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
3: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहाँ एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कल से सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। मंदिर से जुड़े धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है।
4: नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत्र वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र होगा। खास बात यह है कि यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा, बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। उस दौरान ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होगा, लेकिन वस्त्र का रंग पीत ही रहेगा। समिति का मानना है कि इस बदलाव से मंदिर की पूजा व्यवस्था में एकरूपता तथा अनुशासन और मजबूत होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। इससे पहले संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए।
5: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में

0: 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति डीएचएस ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी गोरखपुर के सीएमओ डॉ. राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि समिति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रदेश में अव्वल रही है।
1: हम लोग के डीएचएस को इस बार 2025-26 में भी रैंक वन मिला है, और ये रैंक वन मिलना जो है वो अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। इसका मतलब जो हम लोग अपना जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं, वो बैठक हम लोग सही तरीके से करते हैं।
0: प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कई जिलों में कल मध्यम से लेकर तेज बारिश हुई। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली जिले के एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में कल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वाराणसी की इकाई द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इसमें मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीआईबी के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: वन जीरो वन पॉइंट नाइन FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा हो।

0: वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com
4: स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश में। पहला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। साथ ही इसे आप वेव्स ओटीटी ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का अगला भजन आइए सुनते हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश यहीं संपन्न होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने को है, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका

0: स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा

0: कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू के लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जल स्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है।

0: दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संगम।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
7: सुनना ना भूले। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
6: शाम 6:50 से
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: सुरसंगम में हमारे सभी साथियों का स्वागत है और पहली आवाज KK की आपके रेडियो सेट पे।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अर्ध केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या के रेडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे।

प्रियंका, और आज 14 अगस्त का दिन है, विभाजन विभेषिका स्मृति दिवस। तो चलिए आज हम बात करते हैं इतिहास के उस पन्ने की जिसने हमारे देश की तकदीर और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस आजादी का इंतजार हमने सदियों तक किया था, लेकिन ये आजादी अपने साथ बहुत बड़ा दर्द लेकर आई। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश पाकिस्तान वजूद में आया। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता रहा। फूट डालो राज काटो की नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। राजनीति मतभेद, अलग राष्ट्र की मांग और तेजी से बदलती परिस्थितियों ने अंततः देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इस निर्णय का प्रभाव आम जनता पर बहुत भयानक पड़ा। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, रात के 12 बजे जब दुनिया जश्न मना रही थी, तब लाखों परिवार अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे। जिन गलियों में वे बचपन से खेले, जिन मकानों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, उन सब को छोड़कर उन्हें अचानक एक अनजान जगह की तरफ भागना पड़ा। ये सिर्फ एक जमीन के एक टुकड़े का बंटवारा नहीं था, ये परिवार का, रिश्तों का, यादों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट था। विभाजन के समय जो दृश्य सामने आए वे मानवता को झकझोर देने वाले थे। इस सीमा लोगों का इस सीमा के उस पार या इस पार से उस पार जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लाखों औरतें, बच्चे और बुजुर्ग इस भगदड़ और हिंसा की चपेट में आए। साथ ही उस समय ना ट्रेनें सुरक्षित थी और ना ही पैदल चलने वाले काफिले। लोग बस अपने हाथों में जो आ सका वो सामान और आंखों में डर लेकर चलते चले जा रहे थे। ना जाने कितनी माताओं ने अपने बच्चों को खोया, ना जाने कितने भाई बहन हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। साल 2021 में जब भारत पाकिस्तान ने ये फैसला लिया कि 14 अगस्त के इस दिन को हर साल विभाजन विभेषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा, ताकि हम उस दौर के पीड़ितों के त्याग और बलिदान को कभी न भूलें। दोस्तों, आज के दिन को याद करने का मकसद किसी पुरानी कड़वाहट या नफरत को जगाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मकसद ये है, समझना है कि जब समाज में नफरत और भेदभाव बढ़ता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। विभाजन के उस भयानक दौर के बावजूद हमारे पूर्वजों ने हिम्मत नहीं हारी। जो लोग अपना सब कुछ गंवाकर आए थे, उन्होंने शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। अपने पसीने और मेहनत से भारत को फिर से खड़ा किया और इसे दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाया। दोस्तों, ये दिन हमें सिखाता है कि सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, आज जब हम आजादी की पूर्व सुबह पर खड़े हैं, तो आइए उन लाखों बेगुनाह लोगों को अपनी नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने विभाजन के उस काले दौर में अपनी जानें गंवाई और सब कुछ खो दिया। साथियों, आइए आज मिलकर ये वादा करें कि हम अपने देश में शांति, एकता और मोहम्मद का संदेश हमेशा बनाए रखेंगे। दोस्तों, प्रणाम अयोध्या में अभी आगे और भी बातें हैं खास, इसलिए जुड़े रहिए अपनी रेडियो साथी के साथ।

0: पुल सीवार सुहावल अयोध्या में अभी कॉल करें 7081680000।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: साथियों प्रणाम। अयोध्या में अब आइए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट कलम आज उनकी जय बोल।

क्या आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं? तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमफॉर्म, बीफॉर्म, डीफॉर्म, एमएससी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमलिट, बीलिट, बीएससी होम साइंस, एमकॉम, बीकॉम में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस निकट

दोस्तों, मैं हूँ आरजे प्रियंका और आज की इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपको भारत की ऐसी वीरांगना के जीवन से परिचित कराने जा रही हूँ जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये नाम है प्रीतिलता वाडेदार का। साथियों, जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात होती है तो हमारे मन में अनेक महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की छवि उभरती है। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेक अन्य वीरों को याद करते हैं, लेकिन इन महान विभूतियों के बीच कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी थीं जिन्होंने अपने साहस, आत्मबल और देश प्रेम से इतिहास रच दिया। प्रीतिलता वाडेदार ऐसी ही एक महान क्रांतिकारी थीं जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान देकर ये सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम की कोई आयु नहीं होती है। प्रीतिलता वाडेदार का जन्म 5 मई 1911 को तत्कालीन चटगांव, जो आज बांग्लादेश में स्थित है, के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता नगरपालिका में कर्मचारी थे और माता धार्मिक व संस्कारी स्वभाव की थी। परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा और संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी। बचपन से ही प्रीतिलता अत्यंत प्रतिभाशाली, अनुशासित और जिज्ञासु थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। विद्यालय में वे हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में देशभक्ति की भावना भी निरंतर विकसित होती रह गई। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और चारों ओर अत्याचार, अन्याय और भेदभाव का वातावरण था, और इन परिस्थितियों ने उनके मन में स्वतंत्र भारत का सपना जगा दिया। दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। प्रीतिलता एक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य करने लगी, लेकिन उनका मन केवल नौकरी तक सीमित नहीं था। उनके अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहती थी वो। यही भावना उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन की ओर ले गई। उन्होंने महान क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी दल में प्रवेश किया। उस समय महिलाओं का क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना बहुत कठिन माना जाता था। समाज में अनेक प्रकार की बाधाएं थी, लेकिन प्रीतिलता ने इन सभी बाधाओं को अपने साहस, दृढ़ निश्चय से पार कर लिया। क्रांतिकारी संगठन में रहते हुए उन्होंने हथियार चलाने, रणनीति बनाने और गुप्त कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे अत्यंत साहसी, अनुशासित और बुद्धिमान थी। यही कारण था कि संगठन के सभी सदस्य उन पर पूरा विश्वास करते थे। साथ ही 1932 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अभियान की योजना बनाई गई। चटगांव के पहाड़ तली क्षेत्र में स्थित यूरोपियन क्लब अंग्रेज अधिकारियों का प्रमुख केंद्र था, और इस क्लब के बाहर एक अपमानजनक बोर्ड लगा हुआ था जिस

पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, अर्थात कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। ये केवल एक बोर्ड नहीं था बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान का अपमान था। दोस्तों, अंग्रेजों के इसी अहंकार और भेदभाव के विरुद्ध प्रीतिलता वाडेकर ने अपने साथियों के साथ इस क्लब पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 24 सितंबर 1932 की रात प्रीतिलता ने पुरुष वेश धारण किया और अपने साथियों के साथ पूरी योजना के अनुसार क्लब पर हमला बोल दिया। इस हमले से अंग्रेज प्रशासन हिल गया। हालांकि इस अभियान के दौरान प्रीतिलता स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोस्तों, प्रीतिलता को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं तो उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाएंगी और उनके साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए उन्हें पहले से अपने पास रखा साइनाइड पी लिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा महान त्याग आज भी पूरे देश को प्रेरणा देता है। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं था बल्कि ये भारत के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए दिया गया अमूल्य योगदान था। आज स्वतंत्र भारत में खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन जी पा रहे हैं। ये सब उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है जिनमें प्रीतिलता वाडेकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम केवल उनके जीवन को याद ना करें बल्कि उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में अपनाएं। उनका साहस हमें कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा देता है। उनका आत्मसम्मान हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति देता है और उनका देश प्रेम हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। हमारे युवाओं को प्रीतिलता वाडेकर जैसी महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, देश की सेवा केवल सीमा पर जाकर ही नहीं बल्कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर भी की जा सकती है। साथियों, आइए हम सभी इस महान वीरांगना को श्रद्धा पूर्वक नमन करें और संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। प्रीतिलता वाडेकर को साहस, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम के लिए शत शत नमन।

श्रोताओं अब आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अयोध्या के स्कूलों में हर माह पहुंचेंगे आईएएस आईपीएस और आईएफएस। छात्रों से संवाद कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में देंगे मार्गदर्शन। सावन झूला मेला 17 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी को देखते हुए जिले में सुबह 8 बजे से बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों पर भारी डायवर्जन लगा दिया गया है। ट्रक डीसीएम ट्रैक्टर समेत अन्य मालवाहक वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से जाएंगे। मिल्कीपुर में 23 अन्नपूर्णा भवन तैयार, अब यहीं से मिलेगी सरकारी राशन। ग्रामीणों को सीएससी की सुविधा भी मिलेगी। तारुण ब्लॉक क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बेटियों ने खो खो का खिताब जीता। 8वीं की छात्रा सृष्टि ने शानदार प्रदर्शन के जरिए टीम को मिली सफलता। विद्यालय में हुआ भव्य स्वागत। आमानीगंज के भारखौली ग्राम पंचायत निवासी किसान कृष्ण कुमार सिंह की 23 वर्षीय बेटी आंचल सिंह बनी उपनिरीक्षक। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन, परिवार और ग्रामीणों में खुशी। अयोध्या के मवई स्थित राजकीय आयुर्वेद

0: आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 40 बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया गया। प्रतीक्षा शक्ति और बढ़ाने का आयुर्वेदिक जीवन शैली हेतु शिविर आयोजित किया गया। कुबेरटीला में पहली बार तृतीय तिथि से शुरू होगा झूलनोत्सव।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: प्रणाम अयोध्या।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: हेलो
11: हेलो, सुनो टेलीफोन नंबर।
12: माय नंबर इज 7376804090।
13: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
15: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16: August 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से, विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 का मौन धारण करें।
0: स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। और ये पहली व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजी है जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रीति सिंह, रितु सिंह और संकल्प ने। आपने पसंद किया है देश प्रेमी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
17: मैं
13: नफरत

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की। आपने फरमाइश की है जूली फिल्म का गीत सुनने की किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं।

यह व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आप इसे वेब्स ओटीटी ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अगली व्हाट्सएप फरमाइश हम तक पहुंची है फाजिल्का पंजाब से विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडील शालनी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और आपके समस्त खेड़ा परिवार की। आप सभी सुनना चाहते हैं हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। रवि कुमार, राहुल, रणवीर कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल की। आप सभी सुनना चाहते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

साथियों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजी है आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा धाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने। आप सभी सुनना चाहती हैं बॉर्डर फिल्म का गीत रूप कुमार राठौर, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
5: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: साथियों, हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे प्रियंका।
2: और मैं हूं आरजे तबस्सुम। आप सभी को हमारा गुड मॉर्निंग और नमस्कार। तो प्रियंका कैसी हो?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ तबस्सुम, तुम कैसी हो?
2: मैं भी ठीक हूँ। और कितना खूबसूरत टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी हमारी जिंदगी भी है ना, कभी हंसी के ठहाके होते हैं तो कभी आंखों में नमी होती है, कभी जीत की खुशी होती है तो कभी हार से मिली सीख भी हमें मिलती है ना।
1: बिल्कुल तबस्सुम, कभी बचपन की वो जो शरारतें हैं वो याद आती हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
2: तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ के बीच वक्त है कुछ सुकून के पल चुराने का। आप जहां भी हैं अपने काम की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए और रेडियो की आवाज को कर लें थोड़ा सा तेज और जुड़ जाएं 73-76-80-40-90 नंबर डायल करके।
1: और तबस्सुम देखो, कोई कॉल

0: हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते। चिन्मय बोल रहे हैं, कंगन भैया।
0: नमस्ते, चिन्मय जी बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी,
0: क्या नाम आपने बताया?
1: चिन्मय वाले बोल रहे हैं, बेगमगंज गढ़िया से।
0: बेगमगंज गढ़िया से आप बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: जी
0: क्या करते हैं आप?
1: बैग का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, ये बताइए,
1: आज मैम आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम को।
2: आपको हाँ। भी बहुत शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं एक दिन पहले एडवांस में हम सबकी तरफ से। और बताइए क्या हाल चाल है आपका?
1: सब ठीक ठाक मैम।
2: ठीक ठाक है। अच्छा,
1: आप अपना बताइए, आप लोग दो लोग आते हैं, अच्छा प्रोग्राम हो गया।
2: जी जी, इसीलिए तो
0: 15 अगस्त के दिन जो आने वाला है ये, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 15 अगस्त मैम क्या बोलते हैं, तैयारी करें, खुद खुशी मनाए।
2: जी जी,
0: बिल्कुल, हम करें भाईचारे के साथ रहें और अपने देश के लिए
1: मनाए,
0: अपने देश की सेवा में समर्पित रहें हमेशा,
1: मिलजुल के रहें सब।
2: जी, और जो भी जहां भी है, हम आप कोई भी हर नागरिक जो भी कर सकते हैं अपने देश के लिए जरूर करना चाहिए।
0: चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी पसंद का गाना प्ले कर चुके हैं, एंजॉय कीजिए सॉन्ग।

0: तबस्सुम, देखते हैं हमारे कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल, और ये हैं कॉलर, तो हम सब कहते हैं हेलो।
2: अरे कौन कहता हम किसी को पसंद नहीं, अजी कौन कहता हम किसी को पसंद नहीं, मुसीबतों से पूछो, वो हमेशा मुझे ढूंढती रहती हैं, बड़ा भाई मेरे साथ है ये भी दुनिया।

0: पे राज करूंगा, कि बड़ा भाई मेरे साथ है, इसी दुनिया पे राज करूंगा, भाई पे उंगली उठाना बेच चौराहे पे राज करूंगी, अच्छी इतनी हूँ कि कोई मुझे बिगाड़ नहीं सकता, बिगड़ी इतनी हूँ कि कोई मुझे सुधार नहीं सकता।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने ये लाइनें आप खुद लिखी हैं।
0: मैम को नमस्कार करती हूँ, प्यार भरा नमस्कार, और 15 अगस्त को एक दिन एडवांस में आपको 15 अगस्त को देती हूँ।
1: आपको भी बहुत शुभ।

0: देती हूँ।
1: आपको भी बहुत
2: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और ये बताइए, क्या जो है 15 अगस्त आते ही याद नहीं आता स्कूल के दिनों में, जब हम सब जो है ड्रेस पहन के तैयार होके जाते थे?
0: यस मैम।
2: और प्रोग्राम्स के लिए तैयार होते थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट करते थे।
0: यस मैम।
1: यादें ताजा हो जाती है ना बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में देखिए कितना उत्साह रहता है।
0: मैं अभी भी कंपटीशन ली हूँ मैम, मैं अभी कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और मैं 15 अगस्त को डांस भी करूंगी।
1: अच्छा अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए।
0: मैं, मेरा नाम काजल है।
1: काजल जी, ठीक है। और किस फिल्म का गीत सुनेंगी?
0: एनिमल फिल्म का।
1: ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा दे।
0: जी मैम, थैंक यू सो मच।
1: बहुत शुक्रिया
2: काजल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
0: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
2: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
3: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। कृषि एवं

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
1: सुनना ना भूले। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
0: शाम 6:50 से।
2: दोस्तों, खटास हमें मजबूत बनाती है और मिठास हमें मुस्कुराने की वजह देती है। इसलिए जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और जो नहीं मिला है उससे कुछ सीखते रहिए हमेशा। क्यों तो
3: बिल्कुल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हम तो कहेंगे जिंदगी की भागदौड़ के बीच समय है कुछ सुकून के पल चुराने का। आप फोन नंबर डायल कर सकते हैं 7376804090 और हमसे करते हैं कर सकते हैं बहुत सारी बातें। तो हम कहते हैं अपने श्रोताओं से हेलो।
4: जी
3: नमस्ते जी,
2: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
4: मैं रामपुर से सलीम मंसूरी बात कर रहा हूँ।
2: सलीम जी, क्या करते हैं आप?
4: मैडम मैं मकान बनाता हूँ।
2: अच्छा सलीम, आज आप कल 15 अगस्त है तो क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने, कुछ सोचा है कुछ कल करने के लिए?
4: जी मैडम, मतलब ऐसे स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं बच्चों के तो वो देखने के लिए जाते हैं हम।
2: बहुत अच्छा।
3: और कुछ स्पेशल जी, कुछ खास लगता है ना ये दिन?
4: जी बहुत अच्छा लगता है।
3: तो कुछ खास
4: मैडम, आपसे पहली बार बात हुई है, आज पहली बार कॉल लगी है, बहुत खुशी हो रही है।
3: जी हमको भी बहुत खुशी हो रही है और सभी सुनने वालों को भी खुशी हो रही है। और हम सबसे कहेंगे कि जो है फोन नंबर डाल करें 7376804090 और आपकी ही तरह जुड़ जाए। तो आपकी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है कि पहले भी बात हो चुकी है?
4: नहीं, आज पहली बार कॉल लगी मैडम।
3: जी जी, तो आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं।
4: जी
3: बहुत शुक्रिया।
4: इसके ऊपर जो है
3: जी
4: सॉन्ग सुना दीजिएगा।
3: जी जी,
4: मेरे दोस्त हैं सकावत मंसूरी, मेरे चाचा हैं शकील मंसूरी, एक मेरा जिगरी यार है साहिल मंसूरी, हमारे फूफा हैं इब्राहिम मंसूरी, ये सभी लोग सुनना चाहते हैं।
2: चलिए आप सबकी फरमाइश पर और देशभक्ति एक गीत

0: मासूम हमारा देश जो है विविध रंगों से भरा हुआ है और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं
1: मैम? मैं पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ रायबरेली से। हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
2: हम लोग भी ठीक हैं।
0: पिंकी, आपकी प्यारी सी आवाज सुनकर ही हम लोग समझ गए थे कि आज पिंकी ने कॉल लगाई है।
1: थैंक यू मैम, आप लोगों की भी आवाज बहुत प्यारी है और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है और आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही
2: है। अच्छा पिंकी जी, अब आप शरारतें करती हैं बच्चों की तरह?
1: जी जी बिल्कुल करते
2: हैं, क्योंकि आपकी आवाज भी बच्चों की तरह है। बच्चों की तरह क्या, बहुत ही स्वीट है ना, तो वो थोड़ा सा वैसी आवाज लगती है। तो शरारतें याद आती हैं बचपन की?
1: जी जी बहुत याद आती हैं।
0: पिंकी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: मुझे तलाश मूवी का सुना दीजिए, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। और आजकल मौसम बदल जाता है, पता ही नहीं चलता।
2: मौसम का तो ये काम है ना, वो पल पल बदलता रहता है।
0: पिंकी,
1: बदलते मौसम में एंजॉय भी करना अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छी बात कही। पिंकी, मौसम बदलता रहे ये जरूरी है, लेकिन हम नहीं बदले, ठीक है? हमारा स्वभाव
1: और इंसानों को तो कभी बदलना भी नहीं चाहिए। हाँ। बस वक्त और समय के साथ
0: ही बदलना चाहिए। जो
2: और अगर बदले भी तो पॉजिटिव बदले ना।
1: जी जी जिसका बिल्कुल, अपनी छोटी सोच को आगे बदलिए।
2: बहुत अच्छी बात।
1: जीवन में ऐसे काम करिए जो आपका भी नाम रोशन हो और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो
2: और देश का भी।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: ग्रामोपुष्पलिया जयसिंहपुर सुल्तानपुर से रमेश बोल रहा हूँ।
0: सुल्तानपुर से रमेश जी बात कर रहे हैं। रमेश जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तो किराना स्टोर चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि 15 अगस्त आते ही हम लोगों को स्कूल के दिनों की याद आ जाती है ना?
1: जी जी जी।
0: तो क्या करते थे बचपन में और अब क्या करते हैं इस खास दिन पर?
1: जी मैं तो दिव्यांग आदमी हूँ। मैं देहरादून में पढ़ाई करता था, वहाँ पढ़ाई करने के बाद
0: जी
1: यहाँ आके दुकान किराना की किराना स्टोर खोला, चला रहा हूँ।
0: जी जी, चलिए फिर भी आप जो है कम से कम जो भी है आपने हार नहीं मानी जिंदगी से और आप लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों के लिए संबल है ये चीज।
1: जी
0: चलिए आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा दे।
1: जी मैं
0: चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।

0: तबस्सुम एक हमारे आखिरी श्रोता है जो हमारे लाइन पर बन चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं भले ही हम उनका गाना ना सुना पाए।
1: हेलो हेलो, अरे हमारे श्रोता इतने खुश हो जाते हैं कि
0: हेलो हेलो, आपकी कॉल लग चुकी है। हेलो अयोध्या में,
1: अपना नाम बताइए।
2: जी अंशु नाम है मैम।
1: अंशु जी, कहाँ से फोन किया अंशु जी?
2: फैजाबाद।
0: अंशु क्या करती हैं आप?
2: सर घर में ही रहते हैं मैम, घर का ही काम वाम करते हैं।
0: अच्छा अंशु, और बताइए क्या शौक है आपके?
2: मैम ये प्रोग्राम सुनते रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये शुरू होता है हेलो फरमाइश तो हम बैठ जाते हैं, बस फोन मिलाते
0: तो सुबह से लेके रात तक हमारा कार्यक्रम चलता है। तो आप सारे प्रोग्राम सुनती हैं या कोई खास प्रोग्राम आपको जो बहुत अच्छा लगता हो?
2: वैसे तो मैं यही हेलो फरमाइश ही अच्छा लगता है ज्यादा करके।
0: अच्छा अच्छा,
2: ज्यादा यही सुनते हैं सुबह 8 बजे से कॉल, जैसे ही शुरू होता है बस बैठ जाते हैं मोबाइल लेकर।
0: चलिए देखिए, आपकी कॉल भी लग गई और आपसे बातें भी हो गई, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Thank you.

0: दोस्तों, हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में कंट्रोल रूम से हमें तकनीकी सहयोग दे रहे थे अरविंद कुमार जी और स्वप्निल जी,
1: और प्रस्तुति थी जयंत पटेल की।

0: तबस्सुम। और अब जो है हमारा कार्यक्रम हमें इजाजत नहीं देता कि हम और अपने श्रोताओं से बात करें,
1: तो हेलो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को,
1: लेकिन आपके साथ रहूंगी अब से शाम 5 बजे तक आपकी रेडियो साथी तबस्सुम जहां।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम को 101.9 FM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स ऐप पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण, हमारी रेडियो साथी तबस्सुम जहां के साथ।
1: फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम के कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारियो मैं और कल्याणी है, दो बच्चे है मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे करके लग गया हम फिर।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा बाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा बाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा बाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा बाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते, खेती में भी काम करते।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव यह है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो घर के मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास।
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है,
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको।
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते, चार पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है जी।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, निमाड़ी में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी, भस्मी लगाए तन पर तहते है जिनको शंकर, पीते है भंग के प्याले, कहते है डमरू वाले।
0: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठा कर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए कैसी हैं आप।
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप।
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है, तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना।
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए पहनने के लिए, बता सकती हैं आप।
1: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला।
0: रसगुल्ला
1: जी।
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: तो मुझे गाना सुना दीजिए लता दीदी की आवाज में, जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है साबुन के झूले पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ, उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रंग, कश्मीरी रंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं, तो वही तप वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लेफ्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
1: नून चाय।
0: नून चाय ये क्या

0: गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: हाँ, ये गुलाबी बनते हैं। इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना, उसमें बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वह इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते तो ऐसा नहीं होते ये भी।
0: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
1: बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
1: हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
0: बिल्कुल सुनते हैं।
1: मजा आता है।
0: बिल्कुल, बताइए गाना बताइए।
1: मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, पांच छह सुर में गाते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी? यहाँ
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं।
0: क्या फसल बोई आपने अभी?

0: में?
1: अभी तो कैसा इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
0: ठीक है,
1: चार महीने की रहती है दीदी, चार महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हो उस जगह पर।
0: अच्छा,
1: कई कई किसान करते हैं वैसी खेती।
0: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई ना कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए चार महीने ठीक रहती है ना।
0: अच्छा, चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते दीदी, उतना कैसा है घर के आदमी को संभालने में आप ज्यादा तकलीफ होती।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ, कैसा है जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा
0: तू एक रानी है। चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और

0: आंदोलन
1: बताइए, आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
0: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम हो जाए हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
1: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
0: हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
1: आप भी गाते हैं देश गान?
0: जी जी।
1: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
0: मराठी गाना।
1: बताइए का की
0: जय हो स्तुते श्री महान मंगले दिवास पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता मंदे यशोयुता मंदे।
1: बहुत सुंदर।
0: और एक गाना है ने मजसी ने परत मातु भूमिला सागरा प्राण तरमला तरमला सागरा सागरा।
1: बहुत अच्छा।
0: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
1: जी।
0: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
1: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी हेलो फरमाइश।
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर आसाम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव आसाम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा।
1: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ। और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इससे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलते ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं।
0: जी
1: ज्यादा फेमस है ये, और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी, वीर जरा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे, परीदी राजपूत बोल रही हूँ बैरसी जिला भोपाल से।
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परीदी।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है, वो उन्होंने क्या सोच के रखा है पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरे मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं आप। क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं, तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुँचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी होकर जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप। तो
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगी आप? कैसे मनाएंगी स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली थी, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा
1: बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और हम लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है सभी श्रोताओं का।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना हाँ। बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर जी। आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी, खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं
1: जी।
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: वो पहले शुरू से दो चार साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रम में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले दो स्टेशन से लाइव होते थे, एक स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में वो टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है, आप एज ए लिसनर एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसगन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: एक ही रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरे 77 अभी पूरे होने वाले
0: हैं। 77, इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ।
0: बहुत अच्छा।
1: ऐसा नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ,
0: लेकिन इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते।
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: चौधरी का संगीत है, सलील रॉय की फिल्म, शशि कपूर और साधना की रचना करी है
0: जी। आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी, मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है, मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं ये रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा।
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइज़ करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड से फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना जा सकता है निडिल लगा के?
1: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या बात है, चलिए,
1: उनका काम चल रहा है सारा।
0: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आप गिरधारी जी? आप
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज से कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सुदर्शन फकीर का कलाम।

0: चंद्रदास की आवाज में निदा फाजली का कलाम आपने सुना। विविध भारती से रंग तरंग सुन रही हैं आप। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध।

रचना राजेश रोशन थे मुसिकार, तलत महमूद, तलत अजीज की आवाज थी, फिल्म का नाम था डैडी। इससे पहले पंकज

0: सुदर्शन फकीर का कलाम था चित्रा सिंह की आवाज।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये कार्यक्रम है रंग तरंग। कलाम गुलजार का, मौसिकार भूपिंदर सिंह, आवाज मिताली सिंह की, एल्बम है चांद परोसा है।

0: समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

0: भाई हो जा
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती है हड्डियों या मांसपेशियों की

आजादी के रंग तरंग पर अभी चढ़ाए अमीर खुसरो का रंग। एक बार फिर कलाम-ए-अमीर खुसरो आवाज़।

कलाम में अमीर खुसरो हरिहरन की आवाज थी। रंग तरंग की थी आखिरी पेशकश। प्रोग्राम का सफर यूनुस खान के संग था।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल्पना 80वां स्वाधीन

0: स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा CBI जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में याद शम्मी कपूर की, आज है उनकी याद का दिन।

राजकुमार फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। एक बार फिर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी।

महफिल शमी कपूर की यादों की, और ये तमाम गाने जिनमें है मस्ती बेफिक्री, रेबेल शमी कपूर, मस्ती की बौछार। हसरत जयपुरी, शंकर।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं अवधि लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेलिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: सभी श्रोता भैया बहनों का हम स्वागत करे थे अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लोकरंग। भैया बहनी, अवध की धरती पर सावन उतर आवा है। चारों ओर हरियर हरियर पेड़ पौधा पुरवैया के ठंडे ठंडे झोंके और रिमझिम बरखा मन का मोह लेते है ऐसे मौसम में। सावन के

अपने साथ न खाली पानी लावत है बल्कि गांव गिराव के बरन की याद, झूला कजरी और लोक गीतन की मीठी धुन भी लावत है। तो चलो चला जाए, सुना जाए ऐसे ही अवधी लोकगीत अंजू उपाध्याय की आवाज़ में।

कहीं आम के डार पर झूला पड़त है तो कहीं सखियन के टोली संग सावन के गीत हम सभी गायत है। और अगर सही कहा जाने तो ये समय ये महीना सावन के अवध के माटी के और मन दोनों का हरियर कर देते हैं। तो अब आज के सुहावन छावनी सावनी माहौल में संगीत के रंग घुलत हुआ ये लोकगीत सुना जाए। तो आपको सुनवाई थे ये लोकगीत।

देखा भैया बहनी, बरखा की बूंद जब धरती पर गिरत है ना, तब माटी से उठे वाले सुंदी खुशबू मन का भीतर तक महका जाते हैं। और जब मौसम माँ कजरी के सुर गूंजत है तो सावन और भी सुहावन लगत है। तो चलो अब सुना जाए एक और लोकगीत।

0: अंजू भारती की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुनत रहे, तो अब चला जो है छोटे से अंतराल के लिए चले थे, लेकिन कहीं ना जाए और हम अभी बस लौट के आ रहे हैं आपका ये कार्यक्रम का लेके।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
2: सुनना ना भूले, प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
1: शाम 6:50 से
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: लोक कीर्तन के कार्यक्रम लोक रंग आप सुनत हैं आकाशवाणी अयोध्या से। देखा भैया बहनी, हम सब आप लोग जीवन के आनंद ले थे, लेकिन जीवन के सबसे बड़ा सत्य है कि हम समय हमारा समय कभों एक जैसा नहीं रहा है। सुख के दिन हो या दुख के, सब दिन बदलत रहा थे। इससे मुश्किल घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारिक चाहिए और अच्छे समय में घमंड भी नहीं करिक चाहिए। मनई के असली पहचान ओकर धन दौलत से नहीं होते, बल्कि ओकर व्यवहार, सोच और दूसरन के खातिर ओके मन में बसे प्रेम से होते। चला फिर एक और लोकगीत सुना जाए।
1: हवा हम

0: भैया बहनी, आप सबका ई गवनई बढ़िया लगी हुई ये हमारा आशा है। और देखा, मन करत है ना कि सावन की रिमझिम फुहार माँ बस ऐसे ही गीत गूंजत रहे और हम सब सुनत रही। सावन के मौसम यह मिठास और अपनापन हम सबका अपनी माटी से जोड़ देते हैं। सावन में झूला कजरी और बरखा, ही तीनों मिल के ना बनाते एकदम अनोखा रंग। तो देर काहे की, चलो बढ़ा जाए। और अब हम आपका फिर सुनाएब एक और कजरी, तो सुना।
1: कि हमें अवधपुर के

0: प्रिया बहनी, आप सब सुनत रहे ये अवधि लोकगीत। और आज की सावनी सफर में हमसे जुड़े खातिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा की फुहार आपके जीवन में सुख शांति और खुशियों की हरियाली लावत रहे, ऐसे ही सुंदर सुंदर अवधि लोकगीत आप सुनिए। कल फिर चला अगले कार्यक्रम का सुना जाए। अभी कार्यक्रम यहीं तक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
2: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
3: बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र को FM 101.9 MHz। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
2: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
1: UP 112 की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
2: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
1: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
4: सुनना ना भूले प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
3: शाम 6:50 से।
0: स्वागत अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आज मैं हूँ आपकी साथी

आरजे तबस्सुम जहां आपके इस कार्यक्रम को लेकर। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फरमाइशों को पढ़ने का सिलसिला। हमारे आज के सबसे पहले श्रोता हैं विष्णु मस्कीन, इन्होंने हमें कमेंट भेजा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं, देश की सीमा पर खड़ा जवान सिर्फ देश की रक्षा नहीं करता, वो हमारे घरों की शांति, हमारे सपनों की उड़ान और हमारे तिरंगे का सम्मान अपने कंधों पर लेकर चलता है। उसकी वर्दी में सिर्फ रंग नहीं बल्कि त्याग, साहस और करोड़ों देशवासियों का विश्वास होता है। हम चैन की नींद सो सकें इसलिए कोई अपनी नींद और अपने अपनों से दूर रहता है। इसलिए जवान की सेवा का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बिल्कुल हमें कर्म से भी करना चाहिए, दिल से भी करना चाहिए, और हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो हमारे देश हित में हो। पहले हमें यही सोचना चाहिए कि देश हित में क्या है, उसको करना चाहिए, उसके बाद फिर अपने लिए। चलिए फिर और श्रोताओं को शामिल करते हैं। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर। प्रहलाद सिंह वर्मा ने भी हमें कमेंट भेजा है, लेकिन आपने अपना एड्रेस नहीं लिखा है, तो आप अपना एड्रेस भी लिखें और साथ ही साथ सुविचार, छोटा सा सुविचार, सुंदर सा सुविचार ज़रूर शामिल करें ताकि ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सबकी तरह। अगले श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल शावणे। गोंडा से हमें लिखते हैं सुशील कुमार यादव। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व पर अग्रिम हार्दिक बधाई दे रहे हैं हमारे श्रोता राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू। आप सबके लिए ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म क्रांति से। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जिसे पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर ने। और हमारे श्रोता हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं दिलशाद हुसैन, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं अशोक बब्बर, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं हमारे श्रोता अरुण कुमार मालवीय दर्द, राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, राज पैलेस मऊनाथ भंजन से हैं श्रोता राजेश कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से लिखते हैं मोहम्मद इसहाक, भैरू लाल व कत्रिया धाकड़ हैं हमारे श्रोता उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खट से, कस्बा उगहती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दीवाना से।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप माफ कीजिएगा फेसबुक पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और शामिल हो रहे हैं हमारे बहुत सारे श्रोता फेसबुक के माध्यम से। ऐसे ही कुछ श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के अगले गीत में। तो श्रोताओं के नाम हैं, बाजार रोड मुंगेसापुर से हैं श्रोता मोहम्मद जाकिर मंसूरी, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढेंगिया, बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, बुलंदशहर से हैं रानी गौड़, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, चंडीगढ़ से हैं सतीश आनेजा, परी महल कसोनी से हैं, कासगंज से हैं आनंद आबाद खान, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल, रिंगली छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म खलनायक से अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

अपने अगले श्रोताओं को। कंवर कॉलोनी बड़वा से लिखते हैं श्रोता प्रवीण शिमाली। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबले से हैं गजानंद येले। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव। नवागांव मुणहीपार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं सोहनलाल शाहू। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नाहवकर। लाहौड़ा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें कमेंट लिख भेजी है वेद मीणा ने। कस्बा सेंथल जिला बरेली से हमारे श्रोता हैं फरियाद हुसैन अंसारी। कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजाल ताज। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म इम्तिहान से किशोर कुमार की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से फेसबुक पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और अगले शामिल होने वाले श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश गौतम, नेहरू चौक पैंठड़ से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, ग्राम ऐचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से हैं सकावत हुसैन मंसूरी, अगले श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिख भेजी है, अपने सुविचार लिख भेजे हैं, तो पहले इनका नाम बता देते हैं। ये हैं विष्णु मस्कीन, सोलापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। आपने लिखा है, बेटी सिर्फ घर की संतान नहीं, घर की पहचान है और माता पिता के जीवन की सबसे प्यारी मुस्कान होती है। वो आंगन में आती है तो खुशियाँ लाती हैं और जब अपने घर जाती हैं तो यादों की पूरी दुनिया छोड़ जाती हैं। बहुत सही बात आपने लिखी है। और आगे लिखते हैं, बेटी को प्यार सम्मान और शिक्षा दीजिए क्योंकि बेटी खुश होगी तो पूरा परिवार खुश होगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात लिख भेजी है, हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: और श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं एक अंतराल की तरफ, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं आपका ये प्यारा सा कार्यक्रम लेकर।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुँचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: और भाई साहब, क्या हाल है?
8: यार, हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
7: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
8: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ तुमने कहा। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप जब भी कमेंट भेजें तो कुछ तुमने कहा के पोस्टर में ही अपने कमेंट्स भेजें, ताकि वो शामिल हो सकें, और किसी भी पोस्टर में नहीं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी बात हम तक पहुंच सके, आपके सुविचार हम तक पहुंच सके। चलिए अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। पद्मा टॉकेज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से श्रोता हैं सुदर्शन शाह। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान। कस्बा बराडा जिला अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खां। हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं शाहरुन नूर अंसारी। अगले श्रोता हैं अजीत कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से लिखते हैं नरेंद्र नेताम। उत्तम कुमार बघेल शामिल हो रहे हैं लगान पंडिया छत्तीसगढ़ से। रावर करनाल से हैं हमारे श्रोता ज्ञान भूषण शर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में।

अगले शामिल होने वाले श्रोता हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, भागलपुर बिहार से हैं विनोद कुमार यादव, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, छिंदवाड़ा बेडी से हैं नानाजी लामसे, गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, हीरावाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष कोतारा, गांधीनगर गुजरात से हैं जीके परमार, जोकीहाट दर्शना बाजार अरिया बिहार से हैं मोहम्मद सरफराज आलम, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद माखेजा, सल्लार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज में।

महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे। पटेल नगर मलोट से लिखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया। और हमारे श्रोता हैं दिलीप कुमार, रमेश कुमार, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, गांव भटूनी जिला मंदसौर से हैं ईश्वर लाल मेहर, जवाहरनगर उदयपुर से हैं बाबू भाई, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से लिखते हैं राजेंद्र नारंग, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, गांव फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत।

अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। सफेदो सिटी हरियाणा से हमारे श्रोता हैं नानक खन्ना। अगले श्रोता हैं कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा। अगले श्रोता हैं बीड़ शहर

शामिल होने वाले हमारे श्रोता हैं परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई, विनायक बेंडे हैं हमारे श्रोता आकोट से, अगले श्रोता हैं चिन्मय महतो, इन्होंने हमें कमेंट भेजी है जमशेदपुर से, हिंगोली महाराष्ट्र से लिखते हैं शाजी बोडखे, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, और श्रोता हैं पटियाली रोड गंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी। रिजवान खान ने लिखा है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। रश्मि पांड्या ने हमें कमेंट भेजी है राजकोट गुजरात से। अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र से मनोहर मगर। मजनू कटीला से हैं कमल बालूजा। बबल मल्होत्रा ने हमें कमेंट भेजी है पंजाब से। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से हैं सदाशिव धोरात। सैयद यूनुस ने भी हमें कमेंट लिखी है मराठवाड़ा से। और पुराना तालाब डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी। आप सबके लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जीत से, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: श्रोताओं, चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ हमारे एक श्रोता शामिल हो रहे हैं, तो इनके विचार को हम शामिल कर लेते हैं। ये हैं प्रभाकर गुप्ता, इन्होंने अपना कमेंट लिख भेजा है शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से। आप लिखते हैं, सैनिक देश की रीढ़ और असली नायक होते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आपने लिखी। और आगे लिखते हैं, उनके विचार देश प्रेम अनुशासन अटूट कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान की भावना से ओतप्रोत होते हैं। वे सीमाओं पर इसलिए नहीं लड़ते कि वे सामने वाले से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे अपने पीछे खड़े देशवासियों के प्रेम करते हैं और उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आपने लिखी है। और एक श्रोता है हमारे जो शामिल हो रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से, इनका नाम है राजू मिगलानी, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हमारे श्रोता हैं अनवर अंसारी, बबलेश पवार हैं श्रोता हमारे जो शामिल हो रहे हैं, गांधी चौक बाड़मेर से। तो श्रोताओं, अब चलते हैं, प्यारी सी मुस्कान बनके फिर से ये कार्यक्रम आपके लिए आएगा। अभी हमारा ये कार्यक्रम यहीं तक।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजन गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: स्वागत है सभी सुनने वालों का आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतांजलि। और कार्यक्रम की पहली पेशकश है कैलाश खेर की आवाज में।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और अब आपके लिए ये अगला गैर फिल्मी गीत।

0: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थर जैसा न कोई।
4: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: अभी आपने सुना गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या आप सुन रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।

0: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 2,500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
3: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

0: भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
1: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचारों के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। आप हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ और सुन रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर हमारे कार्यक्रम। अब हमारी ग्रामीण बहनें सुने अपना कार्यक्रम अंगना।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार

0: मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम लेकी अंगना हाजिर है आपके रेडियो सखी वंदना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों का वंदना के प्यार भरा नमस्कार। और देखा बहनी, सावन के महीना चलाता है, चारों ओरिया हरियर हरियर पेड़ पौधा, खेतन में लहरात फसल, आकाश में घिरत बदरा, रिम झिम बरसत फुहार और माटी की सोंधी खुशबू मन का मोह लेत है। सावन अपने साथ ठंडक, हरियाली और खुशी लेके आवत है। और बहनी, सावन की ये फुहार जहाँ मन का खुश करत है, वहां बरखा के मौसम में हमका अपने स्वास्थ्य के खास ध्यान रखे की जरूरत भी होत है। बरसात में मौसम बार बार बदलत है, हवा में नमी बढ़ जात है, जगह जगह पानी जमा होत है और गंदा पानी और दूषित खाना कई तरह के बीमारी के कारण बन सकत है। बहनी, बरसात में सबसे पहले जरूरत है साफ सफाई के। जहाँ पानी जमा होत है वहां मच्छर पनपत है और ये मच्छर छोट जरूर होते हैं लेकिन बीमारी बहुत बड़ी दे सकत है। एक चीज ध्यान रखें कि बाहर से लौटे के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए और खाना खाए से पहले भी हाथ जरूर धोए। बच्चन का भी आदत जरूर सिखा मैं। बनी रेखा, सावन के मौसम सुहावन होते है तो मन करत कि गरम गरम पकौड़ी, समोसा, कचौरी और चाट खाई जाए, लेकिन ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना खाए से पेट खराब हो सकत है। ये खातिर भोजन में हरी सब्जी, दाल रोटी, चावल, मौसमी फल और पर्याप्त पानी, पौष्टिक चीज शामिल करें। बरखा के मौसम में तापमान में बदलाव होत रहते है, कबू गर्मी, कबू ठंड और कबू तेज हवा, ऐसे में सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार की शिकायत हो सकत है। अगर लगातार बुखार रहा है तो डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र से सलाह जरूर लें। जैसा कि बरखा में नमी बहुत बढ़ जाता है तो लगातार गीले जूता मोजा पहनने से पैरन में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने देखा, सावन के रिमझिम फुहार हमारे जीवन में खुशी और ताजगी लेके आवत है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू मन का तो मोह लेत है, लेकिन ये सुंदर मौसम तबे और सुंदर बनत है जब हम स्वस्थ रहा। तो बरखा के आनंद जरूर ले, सावन के झूला झूले, हरियाली देखा, परिवार के साथ खुशी मनाए, लेकिन साथ में अपनी सेहत के भी ख्याल रखी। कहे कि स्वास्थ्य है तो खुशी है, स्वास्थ्य है तो जीवन में उमंग है। और आज अपन सखिन खातिर अपन अंगनैया में लेके आईना है एक अवधि काव्य पाठ, जिकर विषय है शिक्षा से स्वावलंबन, सावन और सखियां, अयोध्या में सावन झूला मेला। कवित्रिया है अर्चना द्विवेदी बहनी। तो चलो सुना जाए एक काव्य पाठ।
5: नमस्कार श्रोताओं, सावन की रिमझिम फुहारों, मिट्टी की सोंधी खुशबू और हर ओर गूंजता भोलेनाथ का जयकारा, इसी भावभूमि में भगवान शिव को अर्पित एक कजरी प्रस्तुत है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी।

सुबह शाम जपें हो सुबह शाम जपें नाम रघुबीर सखी हरे सबके पीर सखी ना सुबह शाम जपें नाम रघुबीर सखी हरे सबके पीर सखी ना नागेश्वर नाथ बसे सरी।

भक्तन के हो लागे भक्तन के हलागे भक्तन के रोज बड़ी भीड़ सखी हरे सबके पीर सखी ना लागे भक्तन के रोज बड़ी भीड़ सखी।

0: हमार सखी सुनिन अवधि मा कविता पाठ, कवित्री रही अर्चना त्रिवेदी बहनी, और हमारी बहनिन का कविता पाठ सखियन का बहुत निक लाग हुए। बात बात कही आगे और हुए बहनी, लेकिन एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
3: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: बहनी सच कहे तो सावन के महीना ही कुछ ऐसे न है कि बड़े हो या बच्चा, सबके मन में खुशी भर देते हैं। बहनी सावन के महीना भारतीय संस्कृति में बहुत खास माना जाता है। ये महीना भगवान शिव के प्रिय महीना माना जाता है। सावन में लोग भगवान शिव के पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ावत हैं और परिवार के सुख शांति की कामना करते हैं। और बच्चन का आप जानत हो कि सावन का महीना भगवान शिव की पूजा काहे के इंजात है? हमार धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीना भगवान शिव का बहुत प्रिय रहा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष का पान कई के संसार की रक्षा के हिन विष के प्रभाव से भगवान शिव के कंठ नीला पड़ गवा, तब देवता और भक्तन भगवान शिव पर जल चढ़ाइन। यही कारण सावन माँ शिव जी पर जल चढ़ावे के परंपरा चली आवत है। लेकिन बच्चे का सावन की महिमा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सावन हमका प्रकृति से प्रेम करे, पेड़ पौधन की रक्षा करे और पानी की कीमत समझे के संदेश भी देते हैं। तो बच्चे, जब सावन आप बाहर हरियाली देखो तो प्रकृति का धन्यवाद जरूर करो, और एक बात याद रखो, पेड़ लगाना और पेड़ बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। बच्चों, सावन माँ कई जगह झूला पड़ता है, गांव गिराव माँ पेड़न पर झूला डाल के बिटियन और बहनियन गीत गावा थी, और आज के समय माँ तो मोबाइल और टीवी हमारे जीवन के हिस्सा बन गया है। लेकिन आप लोगन लोक गीत, लोक कथा और अपन संस्कृति का कभू न भूलो। दादा नानी से सावन के गीत और पुरानी कहानियां जरूर सुनो, कहे से उनसे बहुत कुछ सीखे का मिलत है।

सावन हमका मिलजुल के रहे के संदेश देत है। बच्चे भगवान शिव हमका सिखावत है कि शिव जी सरलता धैर्य करुणा और त्याग के प्रतीक माना जाते हैं। उनके गले में सांप है, सिर पर चंद्रमा है और जटा में गंगा विराजमान है। उनका रूप हमका बतावत है कि सच्ची महानता बाहरी दिखावा में नहीं बल्कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म में होत है। तो बच्चों सावन की असली सुंदरता तब है जब हम प्रकृति के साथ अपन मन का भी सुंदर बनाई। तो प्यारो बच्चों जब अगली बार सावन के रिमझिम फुहार पड़े और जब काली घटा आसमान पर छा जाए और जब पेड़न की डालियन पर हवा में झूमे तब कुछ पल रुक के प्रकृति की सुंदरता का जरूर निखारें। तो बहनी सावन में हम सबके जीवन में हरियाली खुशहाली प्रेम नई उमंग लेके आवे। तो काहे ना अपन अंगनैया में भी एक ठुक कजरी गीत हुई जाए शकुंतला श्रीवास्तव पार्टी की आवाज में। तो चलो सुना जाए ये लोकगीत।

0: और बहनी आज हम बात करब एक ऐसा चीज के जोन हर घर की रसोई में आसानी से मिल जात है, आलू। आलू के इस्तेमाल हमरे सबही सब्जी पराठा और तरह तरह के पकवान बनावे में करे थे। लेकिन का आप जानत हैं कि आलू का घरेलू सौंदर्य देखभाल में भी कीन जात है। आलू के इस्तेमाल करे के एक आसान तरीका है कि एक छोट आलू धोए के छील लें और कद्दूकस कर लें। अब उकर रस निकाल लें और रुई से थोड़ा रस त्वचा पर लगा लें। करीब 10 मिनट बाद पानी का चेहरा से धो लें। और बनी दूसरा तरीका है कि आलू के गूदे में थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाए के लगावें। ये त्वचा का ठंडक और नमी दे में भी मदद करत है। और बनी आलू में पानी और स्टार्च के साथ कुछ पोषक तत्व भी पाए जात हैं। काली पड़ी त्वचा और टैनिंग के खातिर आलू के रस लगावा जात है। और एक जरूरी सावधानी जरूर याद रखें कि आलू लगावे से पहले त्वचा के छोट हिस्से पे टेस्ट जरूर करें। अगर जलन, खुजली, लालिमा या कोई तरह के परेशानी होए तो तुरंत धोए डालें और दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। सुंदर त्वचा खातिर घरेलू उपाय के साथ ही साथ चेहरा साफ रखें, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी पिए और धूप में निकले समय सनस्क्रीन जरूर लगावें। और हमारे सभी सखिए स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और मुस्कुरात रहें। और भाई बहनी बात बात कही मत, तो समय कब निकल जाता है पता नहीं लागत है। तो अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात की जाए। तब तक खातिर अपन रेडियो सखी का दे अनुमति, नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम मांगना। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या आप सुन रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित स्कूली बच्चों का कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मैं हूँ अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवंगन, कौशल

0: कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन,
1: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम चंपा देवांगन।
0: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
0: श्रोताओं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
1: श्रोताओं ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
0: जी।
1: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
0: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गुण, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धू और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
1: तो श्रोताओं एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
0: जी।
1: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
1: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
0: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं ऐसा बिल्कुल नहीं है
1: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
0: श्रोताओं एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
1: तो श्रोताओं ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
0: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था।

0: और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता न थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में दो स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
1: जैसे तुम्हारी मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम ये हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई,
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
5: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
6: अरे जाओ, कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने

0: अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
1: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
1: मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
2: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
1: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
3: लेकिन वो कैसे?
1: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
3: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
4: हाँ? और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
3: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
0: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई, और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई।

0: लाई। पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
2: वल्लभ, वल्लभ,
3: हाँ,
2: अरे तुमने कुछ सुना?
3: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
2: अरे वो अपने देसाई सर है ना?
3: हाँ?
2: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
3: क्लास से निकाल दिया?
2: हाँ।
3: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
2: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते? उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
3: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
4: क्यों राम जी, फाइन लाए हो?
2: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो, इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
4: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
3: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
2: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
3: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
2: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
3: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
2: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
3: इसीलिए तो कहता हूं, सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
2: ठीक है,
3: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
2: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
3: हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
2: क्या?
3: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
2: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
3: अरे भाई, इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
2: हाँ वल्लभ, ये ठीक है।
0: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
1: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी, और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
0: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे।

0: जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
1: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
2: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
1: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
2: हाँ, काफी स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
1: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
2: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
3: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
2: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
3: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
2: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
3: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
2: जी,
3: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
2: उससे क्या होगा
3: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
0: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
5: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
6: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
5: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
6: नहीं।
5: अंग्रेज सरकार के ये आला

0: अफसर, क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
1: नहीं।
0: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
1: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
2: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।

0: हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा इस प्रायोजित स्कूली बच्चों का कार्यक्रम उमंग। 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर ये आकाशवाणी अयोध्या है। अब आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं केंद्रीकृत विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
6: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
7: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
6: अच्छा अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
7: आप 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहते था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते थे
6: मुझे यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे क्योंकि ना उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है तो हमें जाना जरूरी है।
7: वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और दो मिलते थे।
6: हाँ, वो लड्डू बहुत ज्यादा कीमती होते थे ना।
7: बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था बाकी नहीं मिलता था टेस्ट में,
6: बिल्कुल चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना वो एकदम मन में बस जाता था, है ना। और साथ ही वहाँ पे जाके जब देश गान होता था ना तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना।
7: हाँ, बहुत अच्छा लगता था होता उस समय की जो 15 अगस्त की बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है।
6: हाँ, जाना है हमें।
7: यूनिफॉर्म गंदी रहती थी तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाए।
6: हाँ, बहुत अच्छा लगता था, एकदम देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
7: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय में पहुंच गई।

0: देखिए आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त में पहुंच गई ना बात करते करते।
1: मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती है।
0: अरे वाह बहुत अच्छी बात है।
1: उन्हें बहुत पसंद है रेडियो, जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुना। मेरी मम्मी को बहुत खुशी होती है अगर हेलो शैली में मेरी बात होती है तो।
0: बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: कुमार शानू की आवाज है, कितनी हसरत है अमित तुमसे दिल लगाने।
0: क्या गीत सुना है आपने, बहुत बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको पसंद।
1: मेरी मम्मी का नाम ले लूं?
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: मेरी मम्मी का नाम है सोरम बाई और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
0: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है। तो किचन में आपको खाना बनाना पसंद है, तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती है, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूं।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे पोते को दाल चावल बहुत पसंद है इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में?
1: जी, इसलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपका नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है?
1: भारती रखा गया है, इसीलिए भारती रखा गया।
0: बहुत बहुत बहुत बधाई हो आपको, जन्मदिन की अग्रिम बधाइयां।
1: इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए आज हम आपको कौन सा गिफ्ट सुनवाए जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी लगा, कभी पिक्चर लगा।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद।
0: सावन का महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता है।
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताना चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका एक तो रोहित है, और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: पहले बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश गरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी बोल रही हैं। तो ये बताइए उज्ज्वला जी, आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है।
0: अरे वाह।
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त आने वाला है, कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये सब चीजें?
1: हाँ हाँ।
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे। और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा ना?
1: जाना जरूर
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो क्योंकि वहाँ पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का त्योहार है।
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी ये सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं धनु जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से।
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप, तो बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है?
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है? आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं, आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे?
1: 15 अगस्त तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचर सबसे गाना गवाती थी, झंडा उठता था, नाश्ता वास्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको?
1: हाँ, वो पीले लड्डू हमारे यहाँ तो हम यहाँ के है ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मेरा।
0: और झंडा फहराया जाता था, है ना?
1: झंडा फहराया जाता था, सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग, सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहाँ पे कितना अच्छा लगता था ना, जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है।
1: हाँ,
0: सुन के
1: अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, विविध

0: पट्टी की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
2: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियां जीवन में न जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना सजा देते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। जानती हूं मैं कि जीवन की आपा धापे में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी होती हैं। हमने ना जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, जातक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और ये सब कहानियां सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियां हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे वतन के लोगों, ए वतन, ए वतन। तो चलिए

ना क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीरगति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह रहे थे।

0: साथियों।
1: दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूं, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूं। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूं, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूं। जी हां, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं थी, अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा

0: सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो?
1: नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया।
0: लेकिन हाँ, आज तुमने बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है।
1: बनोगी मेरी बहन?
0: सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी।
1: इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा। उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए।
0: न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े।
1: उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा?
0: नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर।
1: कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो?
0: अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी।
1: तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए?
0: शायद मैं किसी काम आ सकूं।
1: अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है।
0: वहां चलकर बैठकर बातें करें?
1: जी भैया जरूर।
0: अच्छा, मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी?
1: हाँ बहुत पसंद है।
0: कॉफी का मग हाथ में लेकर भी बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर भी चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे।
1: सर नहीं भैया, रूनू
0: कौन है? रूनू?
1: कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है।
0: मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए।
1: वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंद करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे। बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था। उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर
0: क्या भैया?
1: कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा।
0: क्यों? ऐसा क्यों?
1: क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां। और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी। डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था। और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था। इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी। एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया।
0: उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा दर्द चला गया?
1: जी हाँ,
0: उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा।
1: मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से।
0: पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने।
1: मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल

चैप्टर बनाऊंगी। और ना पापा, मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी। लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

क्या कहूँ, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूँ। भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ले दूं। क्यों? नहीं भैया आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन। हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करें। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजोए हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत से बातें करने को होने लगा। अचानक वो उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों ये शब्द उतरने लगे।

आगे जब बस रुकी हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती मम्मी कहती मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त बहन न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती कथा दी मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती, कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुलटा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए इस गाने पर मेरे साथ नाचने लगे थे।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहाँ गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड, मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना हाँ। और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

0: पापा अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है। अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी, और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा मैं सोल्जर बनके परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ। अरे पापा आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपकी मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी, और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ। आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके। पता है पापा मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं। हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना। 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको तब काटेंगे। ओके पापा अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फनेज के बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू।

0: जैसे अरियल टट्टू
1: और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी, और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए एक गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी, लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टो, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है, लेकिन हम मनु कहते हैं, लक्ष्मी बाई का नाम मनु था ना, हमारी मनु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था तुझे।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी, बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बजता रहता है।

आप पहले आते थे ना तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकाल कर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका आप आगे कुछ कहते, उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे लेकिन अब मानविका बन गई है भाई। वो तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। मम्मा ने लाड़ से कहा, पल्ले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी, आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा निशित कैसा है, जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया। पापा मेरा सपना तो ये है अब, मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती दुखी होती तो आप कहते क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूँ और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते, याद है ना वो गाना।

आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने उस सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही न चला, मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी, अंदर कुछ गुंडे

पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे। सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। एक महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी सभी मानविकाओं पर हमें गर्व है, उनके परिवारों पर गर्व है। उन सभी के परिवारों को एक गाना समर्पित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम

FM 101.9 MHz से प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी खूब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ है आपका दोस्त कृष्णमणि पांडे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सावधानियां। स्थान सेगमेंट में जानेंगे वेलिंगटन के बारे में। शब्दावली सेगमेंट में होगा कुछ अंग्रेजी और हिंदी के महत्वपूर्ण शब्दों का पिटारा, और आपको सुनाएंगे एक कहानी जिसका शीर्षक होगा बरगद का पेड़ और अधूरा सपना। युवा कहानीकार होंगी मुस्कान यादव, साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। साथियों तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में। यह योजना रेहड़ी पटरी या सड़क किनारे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पीएम स्वनिधि की शुरुआत जून 2020 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को सहारा देने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके और आगे बढ़ सकें। इस योजना की खास बात यह है कि समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगले चरण में अधिक ऋण की सुविधा मिल सकती है। साथ ही डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। पीएम स्वनिधि केवल ऋण उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर, डिजिटल रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। दोस्तों सड़क किनारे सामान बेचने वाला छोटा दुकानदार हो या ठेला लगाने वाला मेहनतकश व्यक्ति, इनके छोटे छोटे कारोबार देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पीएम स्वनिधि योजना ऐसे ही लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। दोस्तों यह थी चर्चा पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों कल स्वतंत्रता दिवस है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। आइए बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान

0: संविधान और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है, इसलिए तिरंगे को फहराते या प्रदर्शित करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सबसे पहले सावधानी यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मानजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। ध्वज को जमीन, फर्श या पानी को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। इसे फटा, मैला या क्षतिग्रस्त अवस्था में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे का उपयोग मेज, मंच या वस्तुओं को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे किसी पोशाक, रुमाल या ऐसी वस्तु के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा कम हो। ध्वज पर किसी प्रकार का लेख, चित्र या अन्य सामग्री अंकित नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे रहे तथा अशोक चक्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। याद रखिए, तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए इसका सम्मान करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, यह थी चर्चा राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सावधानियां। आइए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बरगद का पेड़ और अधूरा सपना। युवा कहानीकार है मुस्कान यादव।
1: बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक बड़ा सपना। मोहन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बने जो अपने गांव के लोगों की ज़िंदगी बदल दे। वह चाहता था कि उसके गांव में कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। उसकी शाखाएं भी इतनी बड़ी थी कि गर्मियों में पूरा गांव उसकी छाया से बैठ जाता था। मोहन को उस पेड़ से बहुत लगाव था। जब भी वह उदास होता उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता भी बीमार थे और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। मोहन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, क्या सपने अमीर लोगों के ही पूरे होते हैं? हवा का एक झोंका आया और बरगद की पत्तियां भी सरसराने लगी। मोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उससे कह रहा है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानते हैं। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। सुबह वह स्कूल जाता, दोपहर में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे मोहन, इतना पढ़कर कलेक्टर बनेगा क्या? कोई कहता, दूसरा हंसते हुए बोलता, पहले अपने घर की छत तो ठीक करा ले। मोहन चुप रहता। उसे पता था कि लोगों की बातें उसके सपने से बड़ी नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। मोहन ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया, पूरे जिले में मोहन प्रथम आया। स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानाचार्य ने उसे बुलाकर सम्मानित किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी। उस रात मोहन बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने हार नहीं माना। हवा फिर से चली और पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे पेड़ उसकी खुशी में शामिल हो गई हो। अब मोहन शहर में पढ़ने चला गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार से जिंदगी चल रही थी। शुरू में उसे बहुत कठिनाई आई। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा। वह पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करता था, कभी अखबार बांटता, कभी दुकान पर जाता और कभी मदद भी करता, लेकिन उसने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। एक रात वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा, क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? उसी समय उसे बरगद का पेड़ याद आया। उसे लगा जैसे वह आवाज फिर कह रही है, हार मत मानो, हार मत मानो। उसने अगले ही दिन मेहनत करनी शुरू कर दी। वर्षों की मेहनत के बाद बड़ी परीक्षा में पास हो गया। वह प्रशासनिक अधिकारी बन गया। पूरे गांव खुशी से झूम उठा। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी की सफलता की चर्चा हर जगह हो रही थी। जब वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन मोहन ने एक सवाल किया, अब आगे क्या, अब आगे क्या? उसने अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठना शुरू

0: रुकिया पेड़ अब पहले से अधिक विशाल लग रहा था। उसे सपना याद आने लगा। अचानक उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी। वे खेत के किनारे खेल रहे थे। उनमें से कई स्कूल नहीं जा रहे थे। कारण वही था जो मोहन का था, जिंदगी में गरीबी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उसने महसूस किया कि सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगले ही दिन उसने निर्णय लिया। उसने गाँव में एक निःशुल्क विद्यालय खोलने की योजना बनाई। लोगों ने पूछा, तुम शहर में आराम से रह सकती हो, इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो? मोहन ने मुस्कुराया, क्योंकि कभी किसी ने मदद की थी, अब मेरी बारी है। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। एक साल मेहनत के बाद गांव में एक सुंदर विद्यालय बनकर तैयार हो गया। विद्यालय के उद्घाटन के दिन पूरे गाँव में उस जैसा माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे, उनकी आंखों में खुशियों के उत्साह चमक रहे थे। मोहन मंच पर खड़ा था। उसने बच्चों से कहा, गरीबी कोई कमजोरी नहीं, सपने देखने का अधिकार हर किसी को होता है। बच्चों ने तालियां बजाई। धीरे धीरे विद्यालय प्रसिद्ध होने लगा। आसपास के गांवों के बच्चे भी वहां पढ़ने आने लगे। कई साल बीत गए। मोहन बूढ़ा हो गया, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। सपने कभी छोटे नहीं होते हैं, उन्हें देखने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। हार मत मानो, तुम्हारा सपना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा सपना जिसके लिए इंसान कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कहानी किसी की यही है, सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी एक कहानी जिसका शीर्षक था बरगद का पेड़ और अधूरा सपना। युवा कहानीकार थी मुस्कान यादव। आइए चलते हैं अपने साप्ताहिक सेगमेंट स्थान की तरफ, जिसमें आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में बसे एक ऐसे खूबसूरत शहर की यात्रा पर, जो आकार में भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक महत्व और रचनात्मक ऊर्जा के कारण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेलिंगटन की, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसके सामने वेलिंगटन हार्बर का नीला पानी और चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। समुद्र और पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 1865 से वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और तब से यह देश राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, वेलिंगटन को समझने के लिए उसके इतिहास पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। न्यूजीलैंड की मूल माओरी संस्कृति में इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है। शहर का माओरी नाम ते वांगा नुई आ तारा है। यूरोपीय बसावट के विस्तार के साथ वेलिंगटन का विकास हुआ और धीरे धीरे यह व्यापार, प्रशासन और परिवहन का प्रमुख केंद्र बन गया। वेलिंगटन का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यही न्यूजीलैंड की संसद और केंद्र सरकार के प्रमुख संस्थान स्थित है। संसद परिसर में स्थित विहाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी अनोखी आकृति वाली इमारत शहर की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। इसके साथ संसद भवन और संसदीय पुस्तकालय भी स्थित है। न्यूजीलैंड के इतिहास में संसद भवनों का विशेष स्थान रहा है और वेलिंगटन की पहचान देश की शासन व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं वेलिंगटन की संस्कृति की। यह शहर न्यूजीलैंड का प्रमुख सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र माना जाता है। यहाँ संग्रहालय, कला दीर्घाएं, थिएटर, संगीत कार्यक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक अभियोजन पूरे वर्ष लोगों को आकर्षित करते हैं। वेलिंगटन का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान है ते पापा टोंगारेवा, जिसे सामान्यतः ते पापा कहा जाता है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय है। यहाँ देश के इतिहास, माओरी और प्रशांत द्वीपों की संस्कृति, कला, प्राकृतिक विरासत तथा विज्ञान से जुड़ी अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। संग्रहालय स्वयं को द्वि सांस्कृतिक, शोधपरक, आधुनिक और जन केंद्रित संस्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यदि आप वेलिंगटन जाएं तो शहर के प्रसिद्ध वाटरफ्रंट की सैर करना न भूलें। समुद्र के किनारे बना यह क्षेत्र पैदल घूमने, आराम करने और शहर के वातावरण को महसूस करने के लिए बेहद लोकप्रिय है। यहाँ कैफे, रेस्तरां, कला और मनोरंजन से जुड़े कई स्थल मिलते हैं। वेलिंगटन की एक और प्रसिद्ध पहचान है केबल कार। लाल रंग की यह केबल कार शहर के निचले हिस्से को केलवर्न क्षेत्र से जोड़ती है। ऊपर पहुंचने पर शहर और बंदरगाह का शानदार दृश्य दिखाई देता है।

0: देता है। शहर की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि प्रकृति यहाँ जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। वेलिंगटन को अक्सर तेज हवाओं के लिए भी जाना जाता है। समुद्र के निकट स्थित होने और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मौसम यहाँ तेजी से बदल सकता है। यही कारण है कि वेलिंगटन को कभी कभी मजाकिया अंदाज में विंडी वेलिंगटन कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेलिंगटन के प्राकृतिक जीवन और वन्य जीव संरक्षण की। शहर के पास स्थित जीलैंडिया एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र है, जहां न्यूजीलैंड के कई स्थानीय और दुर्लभ पक्षियों तथा वन्य जीवों के संरक्षण पर काम किया जाता है। शहर के आसपास की पहाड़ियों प्राकृतिक क्षेत्र इसे उन लोगों के लिए भी आकर्षक बनाते हैं जिन्हें पैदल यात्रा, प्रकृति और वन्य जीवों में रुचि है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी भी देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेलिंगटन के स्थानीय संरक्षण प्रयासों के कारण कीवी को फिर से शहर के आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। 2026 में राजधानी के आसपास की पहाड़ियों में कीवी की वापसी के संरक्षण की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा गया। दोस्तों, वेलिंगटन केवल राजनीति और प्रकृति का शहर नहीं है, बल्कि फिल्म और रचनात्मक उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ स्थित वेटा वर्कशॉप फिल्मों के लिए विशेष प्रभाव मॉडल, पोशाक और अन्य रचनात्मक सामग्री तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन की कॉफी और खान पान की संस्कृति भी काफी प्रसिद्ध है। शहर की गलियों में छोटे छोटे कैफे, रेस्तरा और स्थानीय खाद्य प्रतिष्ठान दिखाई देते हैं। क्यूबा स्ट्रीट जैसे क्षेत्र अपनी जीवंतता, कला, संगीत, भोजन और स्वतंत्र दुकानों के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से वेलिंगटन का महत्व बहुत अधिक है। राजधानी होने के कारण यहाँ सरकार और सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े अनेक संस्थान, इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, रचनात्मक उद्योग, फिल्म, मीडिया, वित्तीय सेवाएं और आतिथ्य क्षेत्र भी शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। दोस्तों, यदि हम वेलिंगटन को कुछ शब्द में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि यह न्यूजीलैंड की राजधानी, राजनीतिक राजधानी होने के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और रचनात्मक आत्मा का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ संसद की गंभीरता है, समुद्र की विशालता है, पहाड़ियों की हरियाली है, माओरी संस्कृति की विरासत है, संग्रहालयों का ज्ञान है और कैफे तथा कला की आधुनिक दुनिया भी है। तो अगली बार जब आप न्यूजीलैंड का नाम आपके सामने आए तो केवल ऑकलैंड या खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के बारे में ही ना सोचें। दक्षिणी नॉर्थ आइलैंड में समुद्र और पहाड़ियों के बीच बसे वेलिंगटन को भी याद कीजिए, एक ऐसा शहर जहां प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, राजनीति और आधुनिक रचनात्मकता एक साथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह थी जानकारी वेलिंगटन के बारे में। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
4: क्या आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं? तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, BSc नर्सिंग, GNM, M.Pharm, B.Pharm, D.Pharm, MSc और BSc एग्रीकल्चर, B.Ed, D.Ed, MBA, BBA, BCA, MLib, BLib, BSc होम साइंस, M.Com, B.Com में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निकट लोहिया पुल, सीवार, सुहावल, अयोध्या में। अभी कॉल करें 7081680000।
5: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें।

0: आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेरिया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6:00 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अंग्रेजी और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। शब्दावली सेगमेंट का हमारा पहला शब्द है अचीव। स्पेलिंग है ACHIEVE, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्राप्त करना या हासिल करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा ही अचीव हिज गोल थ्रू हार्ड वर्क, जिसका हिंदी अर्थ होगा उसने मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल किया। अगला शब्द है जेनेरस। स्पेलिंग है GENEROUS, जो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी अर्थ होता है उदार। इसका वाक्य प्रयोग होगा ही इज ए जेनेरस पर्सन, इसका हिंदी अर्थ होगा वह एक उदार व्यक्ति है। अगला शब्द है एडमायर। स्पेलिंग है ADMIRE, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होगा प्रशंसा करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा आई एडमायर हिज होनेस्टी, इसका हिंदी अर्थ होगा मैं उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। अगला शब्द है डिटरमाइन। स्पेलिंग है DETERMINE, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होगा निर्धारित करना या तय करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा वी मस्ट डिटरमाइन द काज ऑफ द प्रॉब्लम, इसका हिंदी अर्थ होगा हमें समस्या का कारण निर्धारित करना चाहिए। अगला शब्द है स्वावलंबन, जो एक संज्ञा है, इसका अर्थ होगा आत्मनिर्भरता। इसका वाक्य प्रयोग होगा युवाओं में स्वावलंबन की भावना विकसित करनी चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे शब्दावली सेगमेंट के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कल के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा स्वतंत्रता दिवस। हमारी धरोहर सेगमेंट में बात होगी चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज के बारे में और आर्थिक जगत सेगमेंट में जानेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में। साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं फिर आपके अपने इसी पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त कृष्ण मणि पांडे को। नमस्कार।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
2: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
1: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
2: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
1: यूपी 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अवधराज मौर्य और साथियों की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

0: अब लीजिए सुनिए मुन्ना लाल और साथियों की आवाज में ये लोक गीत।
1: धरती के मटिया से नैया लगा के अरे खूनवा से सी

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में

भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: रोक दिया।
1: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब भानु प्रताप और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दिग्विजय नाथ सिंह और साथियों को।
1: मोरे भैया जागो मोरे भैया, देखो आई नई भोर हो चिहू कै

0: अरे ज्यादा मोरे भैया देखो, ज्यादा मोरे भैया देखो।
1: दिग्विजय नाथ सिंह और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: भारती के छाती चीराई।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM 101.9 MHz प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर

0: Media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the assistance includes medicines and medical equipment, temporary shelter and hygiene support, and other essential items needed in the aftermath of the disaster. He noted that India stands in solidarity with the people of Colombia during these difficult times. In Orissa, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in the northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. Our correspondent reports the flood situation is grim in several parts of northern Orissa. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. Meanwhile, IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rain today in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Heavy rain is also likely in northern states including Delhi, West Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra, Vidarbha, Orissa among others. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में ये सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार सुभाष चंद्र पुत्र जयराम निवासी ग्राम परुआ थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या से सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री शिवलली विगत 24 जून 2026 को ग्राम परुआ थाना कोतवाली बीकापुर से कहीं लापता हो गई हैं। शिवलली की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। घटना के समय ये हल्के गुलाबी रंग का सलवार सूट और पैर में सफेद रंग की जूती पहने हुई थी। लापता शिवलली के बारे में यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया अपने निकट की पुलिस चौकी थाना कोतवाली या कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।
2: देश नु चलो, देश नु चलो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: कारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवा पदकेन सम्मानिताः। झारखंड राज्यस्य रांची नगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम आंदोलनम अद्य एक विंशतितमं दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे छात्र नेत्रीणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरश्च गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षिस्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: FM 101.9 MHz प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं जय चंद सिंह और साथियों को।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी
1: सुनना ना भूले प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार
0: शाम 6:50 से।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं छवि लाल पाल और साथियों को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, FM 101.9 MHz।

जी स्वर्ग गांव के FM 101.9 MHz से प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो जय हिंद। पंचो कहा गवा है ना कि जहाँ रहे हरियाली वहाँ मिले खुशहाली। पंचो अपन पर्यावरण नीक रहे तब हम सभी स्वस्थ और निरोग रह। पर्यावरण यानी अपने घर के चारिवार वो प्राकृतिक कृत्रिम दुनिया है जे मां हम सभी निवास करी थी। ओ मैं ये नहीं हवा पानी भूई पेड़ पौधा जीव जंत हर के हु शामिल है। यही मारे पर्यावरण के अपने सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बटे। पंचो बिना पर्यावरण के जीवन के कल्पना करब असंभव है। यही मारे ये जीवन के आधार माना गवा है। और स्वस्थ जीवन के बात की जाए ना तो पर्यावरण से ही मानव जीवन स्वस्थ और समृद्ध बना थे। पंचो देखा जाए तो पर्यावरण न सिर्फ अपने सबका जीवन दिए थे बल्कि वैसे हमें तमाम प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला तेल लकड़ी ये सब मिलता रहा था जिसे हम सबके उपयोग से अपन जो दैनिक जीवन में उपयोग वाली चीज है वो का इस्तेमाल हम सभी करी थी। यही मारे पर्यावरण का स्वच्छ और सुरक्षित रखा हमारे सबके कर्तव्य बना थे। पंचो प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन का अनियंत्रित निकासी से अपन पर्यावरण प्रभावित न हो पावे जहिया मानव जीवन पर नकारात्मक असर न पड़े। हमें सबका मिलके पेड़ लगावे का है कचरा प्रबंधन करे का है जल संरक्षण जैसे काम के माध्यम से पर्यावरण का रक्षा करे का है। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है एक संरक्षण हमारे सबके जिम्मेदारी है। तहिया आवे वाली जो अपनी पीढ़ी है ना वो एक स्वस्थ और सुंदर प्रकृति के आनंद ले सके और तब संभव हो पाए जब हम सभी अपने पर्यावरण का सहेजे रहा पेड़ लगाए रहा। कहा भी गवा है कि एक पेड़ 10 पुत्र समाना तो यही मारे हम सबका पेड़ लगावे का है और पर्यावरण का स्वस्थ बनावे का ही तो बात रही पर्यावरण सहेजे का। लेकिन और एक बात कही सुना जाए एक प्रगतिशील कृषक भैया से। भाई देखो खेती और अपन पर्यावरण एक दूसरे के पहलू हैं। तो एक प्रगतिशील जो किसान भैया हैं सब्जी के खेती कहे हैं श्री राकेश कुमार वर्मा भैया ये ग्राम और पोस्ट सरही अयोध्या से हैं। चलो इनसे जाना जाए कि कौन कौन सब्जी के खेती के हैं का अनुभव है। पंचो हम सभी अपनी पंचायती माँ मेर मेर के अपने पंचन का जानकारी समय समय पे देवावा करी थी जानकारी देवावा बदे अपनी पंचायती माँ समय समय पे मेर मेर के डॉक्टर भैया का बलावा करी थी मेर मेर के किसान भैया का बलावा करी थी। लेकिन आज अपनी पंचायती माँ एक प्रगतिशील किसान भैया हुआ है। भैया से उन्हीं के परिचय जाना जाए सबसे पहले आप अपन नाम बताओ मैं कहाँ से है आप बताओ। चले
1: मेरा नाम है राकेश कुमार वर्मा मैं ग्राम व पोस्ट हमारा सरैया है ब्लॉक मया बाजार जिला अयोध्या का निवासी हूँ। आज पुनः हमें ये अवसर मिला कि मैं अपने किसान भाइयों को सब्जी की खेती के बारे में या विभिन्न कार्य जो हमने किया है जो हमारा अनुभव है मैं उसको अपने किसान भाइयों को शेयर करूं।
0: बिल्कुल तो, का अनुभव है और कौन कौन सब्जी अपने खेते में लागे है मौके पर वो का बताऊं।
1: देखें ऐसा बा कि जैसे जुलाई और अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है इसमें ज्यादातर किसान भाई लता वर्गीय सब्जी जैसे कद्दू हुआ लौकी हुई तरोई हुआ नेनुआ हुआ सरपुतिया हुई या बोड़ा हुआ ये सब सब्जी जो है अपने किचन गार्डन में या जो है खेतों में करके अपने घर के लिए या अपनी कमाई के लिए दोनों के लिए लाभ कमा सकते हैं किसान भाई। लेकिन उसमें सावधानियां जो होती हैं जैसे जहां पर जिस एरिया में जल भराव की स्थिति ना हो वहां आप जो है सब्जियों की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ लौकी लगी है कद्दू लगे हैं नेनुआ भी लगे हैं
0: तो कितना लगाए हैं
1: देखें हम बहुत ज्यादा तो मात्रा में ना लगाए ही कहे से हम बहुत सीमांत किसान है
0: जी।
1: तो हम अपने कमाई भरे का अपने परिवार के खाए ताई और बाकी जोन बाटे ये सब काम किन करी थे।
0: अच्छा
1: किसान भाई एक चीज और उस पर ध्यान दें कि जैसे खेत की तैयारी करते समय वो बेड बना लें।
0: अच्छा
1: बेड बना के उसमें मल्चिंग कर दें क्योंकि बरसात के महीने में खरपतवार का ज्यादा उगना संभव होता है तो इसलिए जब वो बेड बना के उसमें मल्चिंग कर देंगे मल्चिंग दो विधि से किया जाता
0: है। कौन
1: कौन? एक तो पॉलीथीन आती है मल्चिंग की।
0: अच्छा
1: तो उससे किया जाता है। दूसरा अगर किसान भाई इसे न खरीद सके तो अपने घर में पुआल हो या गन्ने की पत्ती हो उससे भी उस बेड को मल्चिंग कर सकते हैं जिससे जो है खरपतवार नहीं उगेंगे और अच्छी

0: उसकी ग्रोथ होगी पौधों की।
1: बिल्कुल, मल्चिंग कह रही है तो ज्यादा घास पात निकाले की जरूरत नहीं है और ज्यादा बढ़िया रहता है। अपने नर्सरी उपदे हम जाने थे जहाँ हाँ। और मौके पर जो फसल लाग है आप बताएं कि लौकी कोहड़ा ये सब है तो निकलत है मौके पर
0: हाँ।
1: तो ओमन का सावधानी मेरे पंचन का बरते है अगर
0: सावधानी अगर बरसात के महीने में जैसे फल मक्खियाँ होती है वो डंक मार देती है फलों को, कीड़े की संभावना ज्यादा होती है, तो उसके लिए किसान भाई या तो कीटनाशक का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान ये दें कि जो हाई क्वालिटी के कीटनाशक हैं उनका जो है छिड़काव ना करें। फोरोमोन ट्रैप ये आता है तो उसको अपने खेतों में कमर की ऊंचाई तक, जैसे लता वर्गीय पौधे हैं या माचे पर अगर आप लगाए हैं उसको तो आप उसको झालर के नीचे उसी में एक बीघे में 4-6 जगह उसको आप लटका दीजिए।
1: अच्छा,
0: तो उससे जो है फल मक्खियां आपके फलों को अटैक नहीं करती।
1: लेकिन एक हमारे पंच का जाने का परे, वर्मा भैया अपने पंचन बदे बढ़िया कमाई वाली सब्जी कौन है का कैसे हमारे पंच लगे जैसे बढ़िया कमाई कर सके भाई, हर के कमावा चाहते हैं पंच।
0: देखें अब जो सीजन जो ना होता करेला लगावे का, जो झालर वाला लता वाला करेला है उसको झालर पे लगाया जाए, या गोभी लगाई जाए, अब गोभी की नर्सरी पड़ रही है जो किसान भाई लगाना चाह रहे हो, या अब तो ये सुविधा हो गई है अपने अयोध्या जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा उसका एक फार्म हाउस है मधु, उसमें जो है आप किसान भाई जाके आप वहाँ बता दीजिए, अपना बीज ले जाके अगर जमाना चाहते हो तो वो दे देंगे, वो आपको जमा कर दे देंगे, या उनका पौध भी आप खरीद कर जो कि शायद 1 से 1.5 रुपए में मिल जाता है आप खरीद के ले जाके अपने खेत में सीधा रोपाई करवा सकते हो। ये सबसे बड़ी सुविधा, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे अयोध्या जिले के किसानों के लिए, जैसे कोई नर्सरी न डालना चाहे
1: हाँ।
0: या नर्सरी में जैसे बहुत दिक्कतें आती हैं कहीं हाँ। बरसात हो गई पौधे मर गए
1: बिल्कुल बहुत सावधानी
0: तो महंगा बीज लाते हैं हम लोग, तो वो जो है उसके लिए वो अपना बीज वहाँ दे दें तो शायद 50 पैसे पौधे लेते हैं। अगर उनका आप बीज लेंगे तो 1 से 1.5 रुपए में वो आपको पौधे उपलब्ध करवा देते हैं, आप सीधा ले जाके अपने खेत में रोपाई कर। विभिन्न सब्जियों के वो जो नर्सरी तैयार किए हैं, शिमला मिर्च भी बा, मिर्चा भी बा, टमाटर बाग, लौकी बाग, करेला बा, अपने उद्यान विभाग से संपर्क करके और जाए के वहीं लेके अपन बिल्कुल लगाए कि किसान अच्छी कमाई कर सके।
1: अच्छा, क्यों कम खेती वाला भी किसान जाए के लाए सकत है?
0: हाँ बिल्कुल, वो का जैसे आपके 4-6-10 पौधा काम बा तो आपको जाए के ले सकत
1: है। तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे पंच अगर चाहे तो थोड़के में ढेर कमाई कर सकते। घर वाले नर्सरी हमारे पंचे लगाए दी गोभी का, तो मौके पर का देखभाल करेगा, का सावधानी बरते?
0: देखे सीजन आ रहा मशरूम का, जो कि अपने बंद कमरे में मशरूम की खेती करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत है। मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए हमें पहले दिन भूसा भिगाना पड़ेगा और इतना भिगाना पड़ेगा कि उसमें जो मिट्टियां या जो हों वो जमीन से निकल जाएं और इसको फर्श पे या पॉलीथेन पे बिछा के हमें भूसा भिगाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है उसकी पलटाई में, पहली पलटाई में आप उसमें जिप्सम और गोबर की खाद डालेंगे।
1: अच्छा।
0: दूसरी पलटाई में खाद उसको आप डालेंगे
1: जी।
0: तीसरी पलटाई पुनः उसको करके ऐसे मिला के ढेरी बना के छोड़ देना है। चौथी पलटाई में आपको कीटनाशक डालना है। पांचवी और पलटाई फिर करके आपको ढेरी बना के छोड़ देना है। सातवी पलटाई में आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब यानी फफूंद नाशक उसमें डाल के आपको उसको बेड पे लगा देना है बीज लाके। तो इसका स्पान अब तो शायद अपने यहाँ जो हमारे नए कुलपत जी आए हैं वो शायद मशरूम की इकाई वो शुरू किए हैं स्पान बनाने का, नहीं तो आपको बस्ती बंजरिया से स्पान पर्याप्त मात्रा में 100 रुपया केजी मिल जाता है, आप वहाँ से ला सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और संभवतः अपने यहाँ भी कुमारगंज यूनिवर्सिटी में आचार्य नरेंद्र देव में
1: जी
0: स्पान बनाने का अब वो शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है
1: जी।
0: किसान भाई एक और पहल बाटे, जैसे पहले कुछ दिन हेल्पलाइन यहाँ के अपने आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के चल रहा है लेकिन बीच में बंद हो रहा है।
1: अच्छा।
0: तो अपने जो नए कुलपति साहब आइन वो पुनः फिर एक हेल्पलाइन चालू कर दी और वहाँ पर किसान भाई काल करके अपन वहीं से परामर्श जब इच्छा हुए ले सके थे।
1: तो बहुत बढ़िया बात है।
0: स्पान बनत बा कि ना बनत बा या खेती से संबंधित कौन कौन बीमारी आवत बा कैसे का होत बा सारी व्यवस्था वहीं से आपका वैज्ञानिक तुरंत काल उठावते तुरंत आपका होकर परामर्श देते।
1: लेकिन वर्मा भाई एक बात हम आपसे और जाना कि आप एक प्रगतिशील किसान है
0: जी,
1: बहुत सुने के मिला था ड्रैगन फ्रूट के बारे में
0: जी,
1: तो आप ड्रैगन फ्रूट भी लगाए?
0: हाँ हम ड्रैगन फ्रूट लगाए ही।
1: कितना लगाए हैं कैसे का उम्र सावधानी पड़ता
0: है? 160 पौधा हम लगाए ही ड्रैगन फ्रूट, जोने पर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी कर चुका है।
1: अच्छा।
0: 1 लाख रुपया दे के आल यूपी के अवार्ड दे के। तो अगर किसान भाई फल की खेती करें तो और बेहतर बा। ड्रैगन फ्रूट हो गया, हमने उसमें बीच बीच में ताइवान पिंक अमरूद भी डाल दिया है।
1: अच्छा।
0: कभी किसी किसान को अगर विजिट करना हो तो आके हमारा खेत

0: भी कर सकता है। इस तरह से फल में, जैसे हमारा अभी तो छोटी एरिया में है, मैं उसको बढ़ाने फिर जा रहा हूँ। अब हमारी जो छोटी एरिया है, 160 पौधे से मैं हर साल यानी 80 से 1 लाख रुपए तक का फल हम निकाल लेते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब पूरा कमाई हो जाता
0: है। हाँ, तो इस तरह अगर कोई किसान करना चाहता हो तो अपना करके और अच्छी आमदनी कर सकता है। क्योंकि देखिए बहन जी, ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी हो, किसी के पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है जो हमें दे देगा, हमारी आमदनी दूनी हो
1: जाएगी।
0: हमें अपने खेत पर मेहनत जम के करे पड़े, अगर आगे बढ़ेगा तो मेहनत करेगा। तो यह नाते किसान भाई, मेहनत करके अपन जो बाटे आमदनी बढ़ावे और खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, इससे जो है उनका मनोबल बढ़ेगा।
1: आपके कहे का मतलब कि अपन सोच सकारात्मक रखे का है, हमेशा आगे बढ़े का है। अगर हम आगे बढ़े चढ़ के हिस्सा ले तो जाहिर सी बात है कि हमें क्यों रुआ की ना पाए।
0: जी, जी, जी।
1: आगे अपने गाँव जमार में नाव रोशन होबे करे, जैसे की आपका है श्री राकेश कुमार वर्मा भैया। आप ग्राम पोस्ट सरैया अयोध्या से आयन, आप एक प्रगतिशील किसान रहें और हम जाने थे कि आपसे सीख लेके औरों किसान आपके आरी बगल के सीख लिए, तो वही आपसे पूछा जरूर आवत हुई हैं। और कहा भी गवाह है कि कर्मय खेती कर्मय नाव और सीख पड़ोसी बस ही गए गांव, सीखे का कोनो उम्र नहीं होते।
0: जी,
1: तो भाई
0: जी,
1: देखो हम सब ही सीखी और सीख के आगे निकल जाये, कितनी बढ़िया बात है। आप हमारे पंचायती में आए, हमारे किसान पंचन का इतनी बढ़िया जानकारी दी कम समय में सब्जी के विषय में। आपका हमारे आकाशवाणी परिवार की वारिस से और पंचायती की वारिस से और किसान पंच की वारिस से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: पंचो। देखो भाई के आप सुनिनी बात कही एक प्रगतिशील कृषक भैया से रही है सब्जी के खेती के बारे में। भैया का नाम रहा श्री राकेश कुमार वर्मा, ये ग्राम पोस्ट से रही है अयोध्या से रही। तो भाई देखो हम जाने थे कि जैसे जैसे भैया अपन खेती पाती कीन आगे बढ़ी गए, ठीक वैसे ने हर किसान का सोच रखे के चाहिए कि हम काम करी और आगे बढ़ी, अपन सोच सकारात्मक रखे तो हम जाने थे कि आगे जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए और अपन गाँव और जवार में नाव रोशन हो जाए। लेकिन भैया देखो हमारे पंच जो फसल लगाए रहा थे वह कह भाव ताव जाना भी जरूरी रहते ही। मारे आज अपने पंचन मरे अयोध्या मंडी से बाजारी के भाव जोन लेके आन, कुछ यही मेयर से है। चावल कामन 3,350 रुपया प्रति क्विंटल रहा, गेहूं दड़ा 2,570 रुपया, मक्का पीली 2,350 रुपया, उरद काली 9,670 रुपया, अरवी 1,975 रुपया, अरहर दाल रही 11,170 रुपया, जय मा शिमला मिर्च रहा 4,950 रुपया। लेकिन लगे हाथ पंचन का मौसम का जानकारी देते चली, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 26 डिग्री, आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 69%। दिशा दक्षिणी पूर्वी पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में हल्का से मध्यम बादल छाए रहे के साथ साथ हल्की वर्षा की संभावना है। तो पंचो यही के साथ विमला का दे अनुमति। पंचो जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80

में वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के प्रेरक

उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व के औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक

गति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा।
देश के

कुल आबादी में 64% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त
बनाना।

एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुसुलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage.

0: the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का ले संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
1: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
1: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए

0: स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान केवल एक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए।
2: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। ये हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़े, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान कर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता है। श्री योगी ने चढ़ावा मामले पर कहा कि SIT की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार

मातरम का सामूहिक गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं।

ये थी निर्मला अग्रवाल की लिखी झलकी संदेह से, निर्देशक कमल दत्त। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, FM 101.9 MHz, प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AI।

0: यार पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी
2: सुनना ना भूले। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
1: शाम 6:50 से
0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुख्य थीम युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 और वंदे भारत मातरम के 150 वर्ष हैं।

1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से देश की मुक्ति की याद में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष लगभग दो शताब्दियों तक फैला एक लंबा और कठिन सफर था। इसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इस घटना ने एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध का समर्थन किया। इन आंदोलनों ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक महान राष्ट्रीय त्यौहार है। सन 1947 में इसी दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। यह दिन हमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। स्कूलों और कार्यालयों में ध्वजा

और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी शान और एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।

0: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे।
1: दोस्तों 15 अगस्त 1947 वाँ ऐतिहासिक दिन है जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे अनेकों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है। देश की एकता, अखंडता, स्वच्छता और विकास में आइए हम अपना योगदान दें।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 9 सुनिएगा न्यूज एट 9।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?

0: रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के

0: संकल्प सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश

0: की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगवीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान

0: अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा।
2: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
5: कार्यक्रम महफिले गजल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं अशोक खोसला की आवाज में ये गजल।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।

0: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: कार्यक्रम महफिल गजल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9595242404 और 7800037222।
2: क्या आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं? तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमफॉर्म, बीफॉर्म, डीफॉर्म, एमएससी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमलिट, बीलिट, बीएससी होम साइंस, एमकॉम, बीकॉम में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निकट लोहिया पुल, सीबार, सुहावल, अयोध्या में अभी कॉल करें 7081680000।
0: जी हाँ, रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार, यानी हेलो अयोध्या, प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। स्टूडियो में आपके साथ मैं शुभ द्विवेदी। इस लाइव फोनिंग प्रोग्राम में कॉल कीजिए 7376 8090 पर। तो इंतजार किस बात का, बहुत ही आसान सा नंबर है जिसे मिलाते ही आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के साथ ऑन एयर और हम आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के नगमे। आइए देखते हैं हमारे आज के पहले साथी कौन है। हेलो,
3: हेलो,
0: हाय
3: सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
3: सर मेरा नाम भरत लाल गुप्ता है।
0: भरत लाल जी कहाँ से फोन किया है?
3: सर मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। मिल्कीपुर से
0: जी।
3: हाँ सर, मैं दोनों आँखों से दिव्यांग हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, दिखाई नहीं देता सर।
0: जी जी
3: जी।
0: तो रेडियो सुनते हैं आप, प्रोग्राम हमारे सुनते होंगे घर पर?
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के हम बहुत शौकीन हैं सर, रेडियो सुन लेते हैं, समझ लीजिए हमारे दिल के धड़कन तेज हो जाता है।
0: जी तो भरत लाल जी ये बताइए, कल क्या है खास कुछ?
3: कल 15 अगस्त है सर।
0: जी कैसे मना रहे हैं आप?
3: 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था,
0: जी
3: तो हमारा देश आजाद हुआ
0: था। बिल्कुल। तो गाना कौन सा सुनेंगे? गाना कौन सा सुनेंगे आज?
3: सर बॉर्डर फिल्म का गाना सुना है, संदेश से आते हैं।
0: चलिए बॉर्डर फिल्म का गाना आपके लिए भरतलाल जी, और हमको कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। थैंक यू सर।

0: और अब आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: ग्राम नंबर काट्यान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ सर जी।
0: जी रूप सिंह जी, कैसे हैं आप? तो हमारे नियमित श्रोता हैं
1: जी। सही बढ़िया है, एकदम मस्त है। और आप सुनाइए आकाशवाणी एरिया में कैसे हैं सभी, और आप कैसे हैं?
0: जी हम लोग भी मस्त हैं, एकदम सही हैं। तो रूप सिंह जी क्या हाल चाल है ये बताइए, कासगंज का क्या हाल है, आपका क्या हाल है?
1: हाल बे हाल है सर जी, गर्मी पड़ती है बहुत, बारिश हो नहीं रही है।
0: बारिश रूठी हुई है, कल बारिश हुई थी हमारी तरफ, आप क्या नहीं हुई क्या?
1: नहीं हल्की हल्की हुई थी।
0: तो रूप सिंह जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ
0: जी। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: फिल्म है दिल जले, गाने के बोल मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन।
0: बहुत अच्छा गाना।
1: सभी श्रोताओं को और आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: दोस्तों कल 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आइए देखते हैं हमारे साथी कौन है लाइन पर। हेलो
1: हेलो सतीश जी, बोले आनंद भैया सर।
0: सतीश जी कहाँ से फोन लगाया है?
1: अमानी गंज गुरुद्वारा।
0: अमानी गंज गुरुद्वारा अयोध्या से?
1: जी जी।
0: क्या करते हैं सतीश भाई?
1: ये सर मैं बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाता हूँ।
0: क्या बनाते हैं?
1: बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक बाइक। जी
0: अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गार्ड कहाँ है इस समय आप?
1: हम इस समय घर पर अपने आ गए हैं, तो हम निकाला फोन मिलाए आपको।
0: जी तो प्रोग्राम सुनते हैं हमारे।
1: जी जी।
0: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: क्रांति फिल्म का।
0: क्रांति फिल्म का।
1: हाँ जी।
0: तो कल कैसे मना रहे हैं आप त्योहार?
1: कल हम मना रहे हैं, हम लोग भी मना रहे हैं दुकान पर अपने।
0: जी हेलो।
1: आप सब? जी जी जी साहब
0: बताइए, कहिए क्या कहना चाहते हैं?
1: स्वतंत्रता दिवस आप सबको बधाई हो।
0: जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गाना सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का।
1: जी सर।
0: नमस्कार।
1: जी

0: दोस्तों 15 अगस्त की समारोह की इस साल की मुख्य थीम है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति और वंदे मातरम की 150 वर्ष। हेलो
1: हेलो, हाँ सर नमस्ते
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से फोन किया है?
1: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, देवकाली रोड।
0: कैसे हैं अर्जुन जी?
1: बहुत सर ठीक है, आज आपसे महीनों बाद बात हो रही सर।
0: अच्छा,
1: हाँ सर,
0: लेकिन फोन आपका रोज लगता है?
1: लग जाता है कभी कभी, आपकी दया है, लग जाती है।
0: अभी हम

0: हाँ सर,
1: लेकिन फोन आपका रोज लगता है।
0: लग जाता है कभी कभी, आपकी दया है, लग जाती है।
1: अभी हमसे कोई पूछ रहा था सर, कोई ऐसी ट्रिक है क्या कि हम फोन मिलाएं और मिल जाए, तो मैंने कहा देखिए ऐसी, हमने कहा ऐसी ट्रिक तो खाली अर्जुन सोनकर को पता है। हाँ, अब हमको खुद नहीं पता है कि कैसे फोन लग जाता है।
0: तो कैसे सर आपसे बस लग जाती है।
1: हाँ, बस मोहब्बत है। और बताइए कल 15 अगस्त कैसे मना रहे हैं?
0: अरे सर 15 अगस्त बहुत अच्छा मनाया जाएगा, बहुत बढ़िया से मनाया जाएगा, पूरे देश में खुशी की लहर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं।
0: ये सर
1: ठीक है। अर्जुन भाई गाना बताइए फिर, कौन सा सुनेंगे?
0: हमारे यहाँ भी जेंडर रोल होता है सर, पूरे परिवार के साथ में सब कुछ करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए।
0: हाँ सर, हाँ भारत देश हमारा बहुत अच्छा देश है।
1: बिल्कुल।
0: यस सर,
1: गाना कौन सा सुनेंगे?
0: गाना तो सर आपको राजपूत बताया है, अगर राजपूत हो तो हो, नहीं तो आप 15 अगस्त का सुनवा दीजिए। एक आईटी क्लर्क
1: नहीं, हम तो राजपूत ही सुनवाएंगे।
0: आज 15 अगस्त है,
1: राजपूत ही सुनवाएंगे। राजपूत आपने बताया है
0: तो राजपूत का ही सुनवा दीजिए सर, कोई बात नहीं है।
1: चलिए अर्जुन भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? गाना सुनवाए
0: सर, सर सर बहुत अच्छी बात है, बस गाना सुनवा दीजिए सर आप।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और
0: इजाजत हो तो एक नाम ले लूंगा।
1: किसका नाम लेना है बताइए?
0: बस अपने लड़के का नाम लेना था, नाम शेख कुमार सोनकर के नाम।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप शेख जी का भी नाम, और आप दोनों लोग पूरे परिवार सहित गाना सुनिए अर्जुन भाई। और कॉल कॉल मिलाते रहिएगा, क्योंकि आपकी कॉल तो वैसे भी लग जाती है। और किसी को ये ट्रिक ना बताइएगा। हाँ
0: ठीक है सर, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: लियो कब लग रहा है अभी?
1: ओके पहले लगा रहा, हमारे पहले लगा रहा वादी में हमारे दोबारा लगी।
0: अच्छा छोटा हाँ छोटा रमला के पहले उठ गया आप, हर बार ना उठा लेकिन देखो उठाए ना अब गुस्सा है ना, लेकिन
1: गुस्सा सीधे वहीं ना उपाय गाड़ी लेके
0: आ रही सीधे यहीं आप
1: अरे मियाला देखा उपाय रायपुर 7 तारीख का
0: 7 तारीख से शुरू होता है तो गनवा बताओ आज कौन सा
1: गाना हमारे सुनाई दियो।
0: कौन सा सुनाई दी बताओ?
1: छोटा सा घर में मिला संसार।
0: ये कौन पिक्चर है?
1: आदमी खिलौना पिक्चर गोविंदा वाली।
0: गोविंदा वाली अरे वाह देखे हो?
1: अरे देखे ना बहुत दिन है मार मार ना।
0: कौन गाना बताओ फिर से बताओ?
1: छोटा सा घर मिला घर में मिला संतार इसके बदले में मिला तो संतार।
0: पता नहीं हम गाना आदमी खिलौना है कि सुनवाई बाय।
1: हाँ वही वही आदमी खिलौना।
0: हाँ टाइटल सॉन्ग है हमारे ख्याल से।
1: हाँ एकदम ख्याल से नहीं एकदम वही है श्रीमती का यही गनवा सुन लो।
0: अच्छा श्रीमती बात जरूर माननी चाहिए है कि ना?
1: माना नहीं चाहिए तो ऐसा स्थान में पर्वत भाग जाए
0: चाहिए नहीं खनवो न मिले।
1: हाँ ना मैं भांग कर रहता था तो दूर मां खाना कहाँ खा
0: गया। चला गाना सुनो गाना सुनो।

0: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और हमारे अगले साथी लाइन पर। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर हम त्रिदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद।
0: पहुंच गए त्रिदेव भाई।
1: यार ये फोन वाला, लेकिन आप तो छोटा रमना का उठा रहे, हमारे फोन।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे साथ हमारे नए साथी। हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताइए।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार,
2: अनीसा बोल रही
1: हूँ। अनीसा?
2: हाँ सर।
1: अनीसा कहाँ से फोन लगाया है?
2: सर, कुचेरा बाजार से।
1: कुचेरा बाजार से?
2: हाँ सर। आप ठीक
1: हो? हम एकदम ठीक हैं, आप बताइए।
2: ठीक है सर।
1: ठीक है, क्या करती है अनीसा?
2: सर घर पर रहती हूँ, स्कूल में खाना बनाने जाती हूँ।
1: स्कूल में?
2: जी सर।
1: अच्छा, तो अनीसा ये बताइए, स्कूल में आप कल कैसे मनाएंगी 15 अगस्त? आप
2: सर बहुत अच्छा से मनाएंगे।
1: स्कूल में तो मनाया ही जाएगा। लड्डू भी मिलेगा?
2: क्या मिलेगा?
1: तो अनीसा गाना कौन सा आज?
2: सब गाना सुना लीजिए। दिल का क्या कसूर?
1: दिल का क्या कसूर? कौन सा?
2: हिलने की कोशिश करना, वादा कभी न करना।
1: वादा तो टूट जाता है।
2: तब
1: तो गाना सुनवा रहे अनीसा।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं

0: कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और हमारे साथ हमारे नए साथी। हेलो
3: हेलो जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से फोन लगाया है?
3: मैं अजीत शर्मा, ग्राम नगला काशियान, पोस्ट औरंगाबाद, तहसील पटियाली, काशीगंज, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: कैसे हैं अजीत भाई?
3: बढ़िया हैं।
2: क्या करते हैं?
3: वैसे तो मैं साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं।
2: जी, वहीं कासगंज में।
3: क्या सर?
2: कासगंज में ही करते हैं?
3: हाँ, अपने गांव में ही करते हैं, अपना जो गांव है वहाँ पे करते हैं।
2: तो ये बताइए, प्रोग्राम हमारे कैसे लगते हैं आपको?
3: आपके प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगते हैं।
2: जी
3: हाँ जी।
2: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
3: गाना कोई देशभक्ति सुना दीजिएगा।
2: देशभक्ति का कोई भी गाना?
3: हाँ जी।
2: चलिए गाना सुनवा रहे हैं और कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका अजीत भाई।
3: ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, हेलो। अयोध्या का आधा सफर पूरा हो चुका है। उठाइए फोन और डायल कीजिए 73-76-80-90, जिसे आप मिलाएंगे आप और हम आपसे बोलेंगे हेलो। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए
1: जी। मेरा नाम अरविंद यादव है।
0: यादव जी, कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं सुहावल से बोल रहा हूँ।
0: सुहावल से बोल रहे हैं, क्या करते हैं
1: जी? मैं चौकीदार हूँ, आज इंटर कॉलेज में रहता हूँ।
0: अच्छा, गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: गाना कर्मा पिक्चर का,
0: कर्मा फिल्म का गाना
1: जी।
0: चलिए,
1: दिया है जान भी देंगे।
0: चलिए ठीक है यादव जी, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन हैं। हेलो,
1: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
2: सर मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील मलक जिला रामपुर से शेखावत हुसैन मंसूरी बात कर रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं शेखावत जी?
2: जी सर बढ़िया है सर, आप सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करते हैं आप?
2: ठीक है
0: जी, एकदम सही हैं
2: जी।
0: आप बताइए क्या करते हैं आप?
2: सर हमारी किराना की दुकान है सर। किराना की दुकान देखते हैं सर, और आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं सर
0: जी। और आपने जो ये क्लब बनाया हुआ है उसमें क्या होता है?
2: क्या जी?
0: आप बता रहे थे किसी क्लब में आप हैं, शामिल हैं?
2: जी मंसूरी क्लब, इसमें ऐसी दो चार जैसे हम हैं साथी, दो चार ऐसी, तो ऐसी थोड़ा बहुत ये काम वूम करते रहते हैं।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो कल का क्या आपका प्रोग्राम है 15 अगस्त का?
2: जी जी 15 अगस्त का ये सर स्कूल में जाएंगे और यही मतलब प्रोग्राम जो होंगे झंडा फंडा मतलब घूमेगा ये सर,
0: झंडा फहराया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
2: जी जी कार्यक्रम होंगे सर।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज शेखावत भाई?
2: जी सर आपने अभी इससे पहले जो एक कॉलर से बात की थी वो बहुत अंदाज पसंद आया था, कहना ना कौन सी भाषा में आप बात कर रहे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा था।
0: किससे बात कर रहा था मैं?
2: अभी अभी आई थी सर इस कर्मा फिल्म से पहले जो गाना था उसके, बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहे थे
0: हम। अरे वाह, चलिए अब जिसकी जैसी भाषा।
2: अच्छा लग रहा
0: है। जी जी धन्यवाद आपका। गाना आप कौन सा सुनेंगे ये बताइए।
2: जी सर आज कोई अपनी पसंद का देशभक्ति नहीं सुनेंगे सर, कल 15 अगस्त को सर कुछ दोस्त हैं, इजाजत हो तो।
0: जी बिल्कुल, नाम लीजिए, हम गाना चलवा रहे हैं आपका।
2: जी जी छोटा भाई तालिब मंसूरी, तहसील मंसूरी, सुनील रस्तोगी और शहनूर अंसारी जी है बरेली से सर।
0: जी चलिए समस्त मंसूरी परिवार को ये गाना, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: ठीक है।

0: उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376-8090। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर मनकापुर जिला गोंडा से।
0: स्वाति जी, आपकी कॉल भी अक्सर लगी जाती है, हमें डर लग रहा है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: कैसे, क्या कोई जादू, कोई ट्रिक?
1: नहीं सर, कोई खास जादू, कोई खास ट्रिक नहीं, मैं सर जब अगला फोन करता है फिर वैसे ही लगाते हैं, कॉल लग जाता है।
0: अच्छा, जैसे कि हमने किसी से बात किया, उसका फोन कटा, फिर तुरंत आप मिला देती हैं।
1: जी सर, जैसे लास्ट स्टेप की बात हो रही थी, मैं वैसे ही डायलिंग मारी थी, फटाफट बस हो गया, फोन लग गया मेरा।
0: हाँ, अब हमारे सारे सुनने वाले ये सुन लें कि स्वाति कैसे फोन मिलाती हैं।
1: जी सर।
0: तो स्वाति ये बताइए, क्या प्रोग्राम है कल का आपका?
1: जी सर, कल तो 15 अगस्त है, तो सभी श्रोताओं को तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर कल स्कूल में जाएंगे बच्चों के, और भी प्रोग्राम भी देखेंगे, और शरीर झंडा तिरंगा फहराया जाएगा सब मिलके, और क्या।
0: और लड्डू भी तो खाएंगी?
1: जी बिल्कुल सर।
0: असली बात गोल कर गई।
1: जी सर, हम बताएं किस लिए भूल गए, जब हम छोटे थे तो बस लड्डू खाने के शर्म से हम स्कूल ही नहीं जाते थे, बस मैं भूल गई लड्डू बता।
0: अच्छा, लड्डू खाने के लिए स्कूल नहीं जाती थी, क्यों?
1: जी सर, जब हम छोटे थे तो हम बिल्कुल नहीं जाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन, क्योंकि मुझे लड्डू लेना स्कूल में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब मैं बड़ी होगी तो फिर मैं जाती थी।
0: बताइए, हम लोग दो बार लाइन में लग जाते थे लड्डू लेने के लिए।
1: जी सर, तो फिर बड़े हो गए थे हम ना, जब फर्स्ट ईयर इंटर क्लास में थे तो फिर हम भी जाते थे।
0: तो चलिए स्वाति, गाना कौन सा सुनेंगी आज?
1: जी सर, मूवी का नाम है काबली वाला, और गाने के बोल रहे हैं ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे मिछड़े समंदर, यही गाना सुनवा दीजिए।
0: जी बहुत अच्छा गाना है स्वाति, गाना प्ले कर रहे हैं आपके लिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर। नमस्ते।
0: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो।
1: नाम बताइए मैडम। हेलो,
0: हेलो।
1: जी हमारी आवाज मिल रही है आपको?
0: यस सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते, बोलिए, नाम बताइए अपना, कहाँ से फोन किया है?
0: सर मेरा नाम मुस्कान है, मैं कुमारगंज से कॉल की हूँ।
1: मुस्कान, थोड़ा सा और थोड़ा सा तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ,
0: कुमारगंज से कॉल किया है मैंने, मेरा नाम
1: कुमारगंज से कॉल
0: मुस्कान है
1: किया है।
0: सर।
1: मुस्कान क्या करती हैं?
0: सर मैं पढ़ाई करती हूँ
1: पढ़ाई कर रही हैं? कौन सी क्लास में हैं?
0: सर, आपके पास 12th में। सर
1: कल कैसे मनाएंगी 15 अगस्त? क्या तैयारी है आपकी?
0: बहुत अच्छे से। हाँ
1: बहुत अच्छे से मनाएंगी।
0: सर, कल तिरंगा फहराया जाएगा स्कूल में, और फिर
1: हाँ,
0: यहाँ से घर से मैं फूल लेके जाऊंगी रंगोली बनाने के लिए,
1: और
0: और फिर अच्छे से एंजॉय करेंगे।
1: एंजॉय करेंगे अच्छे से। तो मुस्कान, गाना कौन सा सुनेंगी? केसरी
0: सर तीसरी फिल्म का।
1: फिल्म का। और कुछ कहना चाहती हैं या गाना सुनवाएं?
0: नहीं सर,
1: बस
0: बस। ओके सर।
1: नमस्ते, गाना सुनिए।

दोस्तों हेलो, अयोध्या का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। उठाइए फोन और डायल कीजिए वही जाना पहचाना नंबर 7376804090। हेलो,

0: मेरे जहां झूम के।
1: श्रोताओं, ये आज की आखिरी कॉल हम अटेंड करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए और थोड़ा सा तेज बोलिए।
2: मंजू वर्मा।
1: मंजू वर्मा, कहाँ से फोन लगाया है?
2: अम्बेडकर नगर से।
1: कैसी है मंजू?
2: ठीक है।
1: क्या करती हैं? हम भी एकदम ठीक हैं। जी मंजू, आपको भी आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसे मनाएंगी कल 15 अगस्त?
2: बच्चे लोग जाएंगे।
1: आप क्या करती हैं मंजू?
2: हाउसवाइफ
1: हैं आप। गाना कौन सा सुनेंगी बताइए जल्दी से, समय हमारे पास नहीं है।
2: जहाँ डाल डाल के सोने की चिड़िया करती है।
1: वो भारत देश है मेरा। ठीक है मंजू जी, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का, और कॉल करने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको
1: नमस्कार।

दोस्तों हेलो, अयोध्या का सफर राज बस यहीं तक। कंट्रोल रूम से हमारे साथ बने हुए थे अश्विनी शुक्ला और अरविंद कुमार। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम

0: उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार कुर्जाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country a Naxal-free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The President said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways